सागबाई जिन एनवायरमेंट आसे के कबुल लाइज अपनी बीसिंगटे जिन्हें नांगमा निजे सामुरुनो जो कक सालय है सालो जत्न कहम करें टी जिन एनवायरमेंट जो बहे कहम करें टनीमान अमुनो वन सूख लाइन फाइजी वन सौ गई बीसिंगटे जो फंकाय जिन गाना गिन थायरक नो जो सबसे टंगलाइन गाना गिन जे जिन कहमा थायरक दंग जो जगह हाइन नांग नुया थाय जिन माय सामू हामिया हाई के बाद अम हाई मानी खिबियाई साफ सुथरा तौमानी बिंग दिन गाना गिन ड्रेनेज फ्रांस बैके जो साफ सुथरा तौर गाहम करेंगे तौमान फाइज अब वन सूखलाइए सालकामी पानी कक बोमे दिन नौ सालो आंग सैखना चिकन सक कक डोंट जस्ट ए बुक बै हिज कवर इंग्रेजी भी कहे कक दंग माना गरम बै केवनो सिनेर केवनो जस्ट खाई अब हाई जो बक्सा बस नाइ बरक मनी सुनी अब हाई जो वन सूगो जे वन सूग मैं बीसंगटे जो अम हाई वन सूगो जे खरसा बरक एपेरेंस हाई के बाद रिचुम चुम्मानी नो जो वन सूगी नाइ जे बो अम हाई आस कहम हामिया अब हाई अमान बी नम कक दुखलाइजी जीरो थ्री वन टू थ्री टू सिक्स टू फाइव थ्री कक दु नम्बर तक सामान 9485007172 अकक दुख कहनी आंबाई गई माना गई बीस जो अम हाई कैब नो जो अम हाई जस्ट खाओ जे जस्ट खाने बीसिंगटे अम हाई वन चुको जे कैबो बी चेहरा बी गरण कैबनी हामिया अंगी मानो कैबनी हिरी चुम चुम मानी किसा हामिया अंगी मानो है कैब बी फाट जा नंब नुगुनाई खरसा बर मैंने कारेक्टर नो नंग केव चौमिया जो बक्सा बस नाइ जे अम हाई केव केवनो जो बी रिचुम ड्रेस है के बाद बी तमु चामु फाट जा सैमियाई बी एपेरेंस जे तुम्बानी नुकमाबाई जो बंग नो तमी सैनाई कल कतर वन सौ केवना हामिया वन सौ जिन कई कम बोल अम हाई कम बरों थको जिन अम हाई कैसे कौ दुना नहीं एक्चुअलि वाई सौ सौ महंगो फ्री कोई किसा हामियां खाके वाई सौ सौ महरों दो तमने हिंगे जो सैमान सूगी और खुलाई दौमानी और बगे वाई सौ किसा गंगो हम आं तीन सारे मैके तीन नौ सालखमानी पानी कक बोमे डोट जस्ट ए बुक बै हिज कवर कैबनो बी गरण बै कैबनो जो अम हाई वन सूगो जे फाट जाके कैसा बरकनो बी एपेरेंस बनी वन सूखी बरक अम हाईरकना हाईना कि बीसिंग तम दं तम ना बो बहाई अब हाईरक जो वन सूखिया अंगू अम हाई कम बरन थको ना कि तबुन जराब चीनी बड़क किसा कबाकोम हाई के नगो जे बी एपेरेंस जो चीनी बड़क एटलिस्ट आं सामने मैसे चीनी बड़क एटलिस्ट जो कैसा बी रिचुमबाई बी तमु चाउंबाई जो सैमालिया जे बो बस जरते बी क्वालिटी दं क्वान्टिटी दं जो अब सैमिया दाम हिंगे जो जिन बड़क कौन आं सकुनाई जो बेलेखेनो अम हाई फुनुकना मानी जिन जहाँ खाने अब हाईनो जो मुसूम जागो बेलेखे जो लगजारियस दंगनाई बहाके फायदी आनीजे दंगमानी आनीजे मुसूमानी आबुनो जो गाहम करेंगे टनी बहाके बस कमक थी मानलाय आगू कई मान आबुनो जो वन सूख अब जिन मेन वन सूख कि जो अम हाई नगो जिन्हें गांव

जों नाकारमा सानाव उन बगै नाय नाय आं बर' दाग नों नों बायखौ अक्सायथ' अंगा आं थांबाय आंनि दंहा नाय नाय 100% गित नरक इसा जायदगदि आंनि खामानि दावदै बुक सं नरक जतन काम करों दं आं दिनै सान्नाय मेका हैसि जों खरगसा बर'क न' हाय केबा खरगसा जा साना फोरां थों जों फाथजाके बिनि एफेरेन्स बिनि हकुबाय मन दास्ता खाय दिनै सामान गौसे तामबाय नायदि अ सोंसार सोंखाव मा टाइपनि बर'क न' मानो बाक्सा हांखे निजिन' बेलायखे बलाय फंनो मोनजागौ आनियाव माहाय दङ आनियाव माहाय दङ किन्तु आल्टिमेटलि बिनि बिसं हांखे खुख्ला टका थाइसे महाय बाक्सायावसो बर'क अमाहाय दङ जे आं बर'नो फुनुगै दामख्लायनाय बै आनि आं दामो आं दाम दं बयनो साय मानाय आबाहायखे दंमानि बिसिंतै आबाहायखे ओंमानि बिसिंतै जों टेप टेपखे दिनै लाइफ न' जों सोनामै लांथं आमनि बागै जों अमहाय एडभार्टाइजमेन्ट दिखा बा केबन' आनि दंग' हनै फुनुगनानि केबन' आनि अमहाय ओंग' हनै फुनुगमानि आनि अमहाय ओंना आनि अमहाय दंना हनै फुनुगमानि आबाहायरखनो बाद्रुयनाय जों बाहायखे गाहाम गोरोंखे दंलैमान बाहायखे गाहाम गोरोंनि बिसिंतै थांलायमान आबुनो से नायनानै आंखे वानसुगु हायदिबा आं बागै आंनि खामानि दाख्लि बुकसं नरक वानसुगदि वानसुनि बिसिंतै नायदि जों बाहायखे सिनिथेबो गाहाम गोरोंखे दंलै मालाय आं फायफिनाय नों बाहाय कक सालायफिनाय सिखुन सागासे कक न' हायफानो आवासि उसुआव माहाय कक रुबो सालायनो हायदिबा आंखे आबुनो दाबुक हायनो खरां बान्दाव आं गिसा थांनाय आबुनो लानाय फायफिनाय नों बाय कक सालायफिननानै दिनै अर सालक आं कक सालायमानि बिसिंतै बोखानि कक रबो सालायनाय नों दाम सानामु जों आनाव साहरदि दामनि हिंगांखे साग गाहाम साग नायमानि निजिनि मानथाय सक्ताय दंमानि बिसिंतै जों बाहायखे गाहाम गोरोंखे दङै मालाय आबुनो नायनानैसै हायदिबा आंनि खाबुनि दाग्रि बुक दं आंखे फायदि आं दाबो हायनो गोनां बान्दाव थानाय आबनो लहायनाय गिबिलि फैफिननाय साल खामानि बान्दाव आं बाय दंदि आं ककदुक्ति सालि आं ककदुक्ति सालि मै कक सायमांग्लाक जरा गोरै आंनि खाबुनि दाग्रि बुक दं एक्सुलि टेकिसा हलो आंखे आंनो मै कक सालायफिननाय कक सालायमानि बिसिंतै दिनाव बान्दाव आं फायफिननाय नोंखौ फायदि जों दाबो हायनि गोनां बान्दाव हाबलायनाय दिनै फुंनि दिनै कक बरक बान्दाव आं तेसरा तलब फायदंखिर' नोंहानो ककडुक खालायफिदि ककडुक सायरवानो 0381 232 6253 9485 00712

0: कन्स्ट्रक्शन डे नहीं पाला जाएगा टे यूरोपियन डे इंटरनेशनल डे फॉर डी टू टेल एनिम से न्यूक्लियर वेपन्स नाम जाए साल ते इंटरनेशनल रैबिट डे नहीं पाला जाएगा तीन आपने करीब वर्ल्ड एनवायरमेंट डे तीन नौ साल जी वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे तीन नौ साल जो बाहर चीनी गाना गिनी एनवायरमेंट कहम के तंगीमान टनीमान टे आबुनी बिछंगी सक्रम बहे कहम खालामान आबुनो जो वन सूख लाइन आबुनी बगे जो टे बुहान गबां गायदी टे गाना गिनी सबसद्रागे तंगदी तानी बहे सास्थन सम्पद टे नीने गाना गिनी एनवायरमेंट हामिया हंगे बाद्रा के तंगे नीनी सक हामियां अन फायदी जो बुफान गायलाय गाना गिनी जो सबसद्रागे तंगलाय दिन वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ देव तीन साल
1: आबुन कारीब तीन हाई साल वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे निब पालाई जागो आउ बिथिब्रा सिनी सकनी बगे बलै नगमानी आबुन बगे न सिनी सक हामक्रायनी फाचिंगो बिनी याक बेलै नगमा होने दिन फार्मासिस्ट डे वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पालाइ जागे दंग तई आबुन कारीब तीन अंतोदय दिवस ब पालाइ जागे दंग अब गांक पालाइज नाहर मूंखासी हदानी विशिंग उकलग कलाइजाक आबोहाय बरक रग्न बरक नक्सकांग्री तुबुनानी बरकनी हामक्रायनी बगे तामो ताम्र खालायनो नां आबो रग्न वान सोखनानि बगे अ अन्तदया दिवस पालाइजागै दङ
0: गासग्रा दिनै सालो पार्टि मुनुजों सायमांका दाबुक जों कक्टमा हाबलायनि
1: आव
0: कक्टमा दङ स्टेट स्टाइपेन्ड स्किम आन्डार द हायर एडुकेसन डिपार्टमेन्ट त्रिपुरा एकाडेमिकिया नैसाइ नैसि डक निसिसिनि व अनलाइन एप्लिकेसन रान बगै स्टेट स्टाइपेन्ड स्किम डिप्लोमा डिग्री पिजि एम फिल पिएचडि दि ब्यागन ब्लाइन्ड अफ हाई फ्रेस हेकेबा रिनिउल स्टुडेन्ट रक एकाडेमिक इयार 2026-27 जराव अर नपर्टालो थाङिनाय मोनो एलिजिबल स्टुडेन्ट रक बर्नि बेनिफिसियारि मेनेजमेन्ट सिस्टेम आजागाव नायमानो ते HTTP हायर एडुकेसन डट त्रिपुरा डट गभ डट इन नोर स्टाइपेन्डनि बागै एप्लाइ खालामनाय हब नवेम्बर तालनि साल जि सालनि सेकां नोर लग इन मा खालायनाय तेबो कामखौ सायमानो जों केन्द्रक हायर एडुकेसन डट त्रिपुरा डट गभ डट इन लग इन खालायनाय मानो
1: आव हानियाफ दङ दक्षिण हांखरनि बिसिंग खबजाग PM श्री रोंनक नि बिसिंग रानी लक्ष्मीबाई जे सेल्फ डिफेन्स अब फोरोंजाखनाय जेनि उमर रक बिसि टीचार काजाक बरक ओ सेल्फ डिफेन्स एबा मार्शल आर्ट्स रोंनायनि बागै बरक बुमुं जमारै मानो आबुन बागै ओ सेप्टेम्बर तालनि 24 सालमारिनि बिसिंग दक्षिण हांखरनि यथ दाय स्पोर्ट्स बेदेग थांगैनाय बिलुनियाव थांगै ओ जे सार्टिफिकेट गोनां मार्शल आर्ट कर्स सोलोंनायनि बागै बुमुं जमारनायनि बागै जे सोलोंनो मोसौनाय रोंथानि कयलाय सानहरजागै दङ एबा मुं सानहरजागै दङ दाय आबुनो कारै ओ बुसकां TTADC भिलेज काउन्सिल चंमारि न किटिंगै गुमति हांकरनि बिसिंग खबजाक जे जे थायो बुट नाहारजाखनाय आ बुट नाहारजाखमानि 200 मिटारनि बिसिंग लकरकनि थांलाय सुथानि गिसा माना बक्सिन मुं बक्सिन जाका अ दागिमुं अ तालनि 26 सालमारिनि सारिकनि दामब्रैनि सिमि चेंगै 26 चुकु नि सारिक सानजा दामदक जरा फनांजागै तंगानि होनैनै साख्लाय जाका अ साख्लाय जाक जरा व खरक बानि गोबां खालायनाय लघुरक गथुमै मानग्लाक एबा हिमि मानग्लाक नि साख्लाय जाका तै लगिव लाथा तै स्टिक तै लोहानि रथ तै पाथर एबा पेरनाइजार आमहाय

0: टकमा मानमा चोबाव रजाग रजाग भारतनि लुकुरक्न बन्दे मातरम रचापों थानसा ख्लायना व नांगमानि बारजा यासाक्लांखा केन्द्र हापांग मणिपुर नागालैंड तै अरुणाचल प्रदेश नि केबें मुंगनां किचासक आमचायो नायमथां बाहिनिनि आलायदा फान केरों एबा आपसपा जरा तैब तालदक बांग्रजाखा बोसकां अक्टोबर तालनि सिमि अजरा बांग्रमा सामंग फनांजागानो मणिपुरनि कायसिथाम थाना आमचायनो कारै बेबाक हास्तेव आपसपा फिनजाक तंगानो नागालैंडनि कायचुकु हांकर अकेरंनि जरा बांग्रजाखा आबनकारै अरुणाचल प्रदेशनि कायथाम हांकर ते आसाम गानानि नामसाय हांकरनि नामसाय महादेवपुर ते चौखाम थानानि बिसिं आमचायो अ आपसपानि जरा तालदक बांग्रजाखा एडिसि बिलै चंबारिनि पान्दातै आवाइमुं तिनि शारीरिक दामब्रैय पायानो अतालनि नैथि चार सालमारि फुं दामसिनिनि सिमि बोट यासाक जागानो हास्ते चंबारि कमिशननि तांग्रा अनुराग सेन साका कायब्रैचि ब्रै ब्लक कायनै साय चुकुरा बाचि आचुक थायो बोट यासाक जागानो बोट लेखा जागानो अक्टोबर तालनि बा सालमारि असामतायनो रोगै बोसकां अक्टोबर तालनि चिसिनि सालमारिनि सिमि नैजि सालमारि जरा आगरतला आउलिनि जुदा जुदा लामाव शारीरिक दामबानि सिमि हर दामसा जरा मालखुं थांलायसु किजासोक मानाबक्सिनजाक तंगानो ट्राफिक पुलिस सुपार कांता जांगिर साका आगरतला ट्राफिक भवन ककतुमा थुमनाय रकनि थुम अककतुमानो रोखा ब साका असानि जरा शारीरिक दामबानि सिमि फुं दामदक जरा आगरतला आउलि लरि थांलायसु ख्लायमाव ब मानाबक्सिनजाक तंगानो उनकोटी हांकर फटिग्रायनि नजरुल कला केन्द्र व पण्डित दीनदयाल उपाध्यायनि फिल्ड साराचि आजायमा सालनरगै मिया संसाजाक मान्दानो चेंगिरेखा मालमाता हामक्राय मन्त्री सुधांशु दास ककथुम हुकुमु नायखुंनि चेतनबाय संसाजाक पान्दा दीनदयाल उपाध्यायनि लांमातै सामुं तांलांमानि कक रकनतै ककनारक लायखा पान्दाव मान्जांनाय रक पान्दा आमचायनि लुकु आदंते अफिसार रक मान्जाखा मन्त्रीबक्रक नरेन्द्र मोदी खनाफुं दामचिसाव आकाशवाणीनि मन की बात पान्दानि बिसिंतै हाकतर तै बुइ हाकतनि लुकुरकबाय ककलाम सालायानो अब मन की बातनि फिल सारा थामचिचार बेरेमनि पान्दा अ पान्दा आकाशवाणी तै दूरदर्शननि बेबाक नेटवर्क आकाशवाणी ककतुमा वेब बेदेकनि वेबसाइट www.newsonair.com ते न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप खनाय मानबायानो पान्दा आकाशवाणी डिडि न्यूज मन्त्रीबक्रकनि नायखुं एबा ककथुमते आवाय ककचं लाइनकनि यूट्यूब चेनेल अब खनाय मानबायानो पान्दा पाइमानि यागुल आमचायनि ककबाय खनार जागानो अ आमचायनि पान्दा हर दामचारतै तै वैसा खनार जागानो हास्ते ब्रै नायख्रायनि चेयारपार्सन ओंगै हाइनहाय बिसिक थामनि बागै चंजाक फिरका जर्ना देव बर्मा सुजाता देव मेघा पाल चौधरी ते माम्पी दास ब कोताल आदंजोग ओंगै बिसिक थामनि बागै चंजाक फिरका मिया हदा रों ते हदा हामख्राय नायखुंनि आलायदा तांग्रा कक मुं कायसाव अ कक तुमानो रोखा एशियन गेम्स हसला रकनि चि साय मिटार खासिक लाइमाव रुक फाइया कुमानखा भारतनि गुलबीर सिंह चि मिटार एयर पिस्तल मिक्स इभेन्ट रांचाकनि याकुमानखा कमलजीत तै सुरुचि इन्द्र सिंह कायनै रांचाक कायचुकु रुक फाइ तै कायचिनै ब्रुन्सन खबै एशियान गेम्स भारत ताबुकसाक जरा कायनै चिथाम याकुमानखा त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन बाय नायकलजाक चन्द्रमुकुमु अरनि पुइला डिभिसन लीग फुटबल मिया सानजानि थांलायमाव कप्लायंखा एगिए चलो संघ उमाकान्त मिनि स्टेडियम संसाजाक थांलायमाव एगिए चलो संघ नैसा गोलनि फेरबाय फरवार्ड क्लाबनो मेचेनखा ताबुक नबारतिबारनि ककतुमा तिनि नखा किचा मोनाकजाक तंगानो हास्तेनि बेबा खांकर फेरांक गै वातै वावै मानो हनै हजाख्लायका नबारतिबार नायखुं तिनि सालनि साखानि तुंमारि थामजिबा डिग्री सेल्सियासनि गानागिनि तंगानो तिनि आइचुक बोखागो खामानि तुंमारि तंमानि नैजिबा दशमिक बा डिग्री सेल्सियास ककब्रक बाय ककतुमा परिमं ताबुक जरातै अरन पाइखा उलनि ककतुमा आवाय इंगानो सानजा दामसिनि तामै सति ब्रैजिबाव
1: আকাশবাণী আগরতলা শুরু হচ্ছে অভিজ্ঞাপন।

आज एक सवाल करें, गुजरना होता है ना इसका काम, तो ये हमारी इजाजत के बगैर जो हमारे बीच आकर बैठ गया है उससे इस बात का कुछ हिसाब करें। क्या वो हमें फिर से मिलाने की जिम्मेदारी लेगा? उससे थोड़ी कुछ दरखास्त करें। अब तो वो दर्द को भी मेहमान बना कर ले आया है हमारे बीच, उससे पूछ तो ले कि अब आगे प्यार करें या बस हार जाएं और इस मोहब्बत का मलाल।

जहाँ होता है वो कहानियाँ जो अधूरी रह जाती है, क्या उनका भी कोई अंजाम होता है? सुनाए हर राह हर सफर की कोई ना कोई मंजिल होती है, फिर क्यों मोहब्बत में कुछ मुसाफिरों का एक दूसरे के दरमियाँ ही मुकाम होता है?

Kanaitone rang sakni takubuku. Nor Kanaitungu Sarasapoyan dog megaharsu tirini o jorani. Akoshfani agurtolani FM Uzun Topanda. Kachuk song logio tongdi, shabrumrup no kanawi tongdi, zini akoshfani FM Uzun Topanda. O jorao, norok bai, haino hai, kiting nani baki, norok bai, kurung nani baki, haino hai, sok bai ka. Aho, rang sakni takubuku tirini shalto. ओ हाथी बार्सनी गबांग मसालनी स्लाई तेबो कायदोक सालनी स्लाई तिरिनी साल ते किसीसा जुदा तामनी हिमाले आकाशवाणी आगरतलानी एफएम उज्जयन तो पांदा ओ तिरिनी पांदा नि पुइलानी बखागो छंखना लायनाय अब जतनी स्लाई नरकनी हमसाकमानी ते खातुंगमानी पांदा अबंखा खापांग याख्राई खापांग याख्राइ पान्दाओ नरक जत्तनो बेलाय फेलाय खेनो लामसुगु नरक बेलायनो काहाम करुं तंगमानि बिसिंते तिनि जों करुं लायदे हायनो हाय ककदुकनि बिसिंते खाचुक सं नरक जत्तनो कयनाय दादाक्सिदा ककदुगु करुंगि मानो ककदुक नंबर 2326253 हायनो हाय कितिंगे सापिरारे नै थाम नै दक नै बा थाम खाचुक सं सकांगबारियानो नरकनो साक्लायजाक एबा साय रोजाक तिरिनि सालो तामनोतै जों ककलबो गोरोंलायनाय अबंखा जों चिनि हुकुमु चिनि हुकुमुनो रोगै जों ककलाम सालायनानि कक तिरिनि सालो नरक जतनो तियार ओंखाना तियार ख्लायि तनखाना हुकुमुनो रोगै नरकनि ककलब ककतां रक्न तियार खायतनदि तै गोरोंनानि बाखै चायतकदि 2326253 ओ नाम्बारो खाचुक सं सकांगबारियानो ककदुक सक पाइजाक नरक जतनो लामसकमणि बिसिंते फाइनो फाइदि हाइनो हाइ गोरोंगै नायनो ककदुगो साबत हेलो हेलो हेलो चौ थांखा रंगसाखनि दाखोबखौ नरक जतनो कबक नाय नरक दादाक्सिदा गोरोंगै पानो तिरिनि खापां याख्राइ पान्दा तिरिनि खापां याख्राइ पान्दा उतंगो आं आरजे उषा आं बाय गोरोंगै मानो दादाक्सिदा ककदुकनि बिसिंते तिरिनि जों सिकांगबारियानो कायसा कक प्रथमा रोजाक आबनो दै जों ककलब खोनालायनाय तिनि अबंखा चिनि हुकुमु रंगसाखनि दाखोबखौ चिनि हुकुमु मुकुमु अबो चिनि खाबाय चिनि थैबाय चिनि थिनांबाय चिनि लाय थांनाय सालबाय चिनि ताबुक चिनि इमां मुखथां चिनि हमजाकमा चिनि खाजामा चिनि बेबाक नरगै चिनि हुकुमु मुकुमु अबबाय निनि सिनिमुं अबबाय निनि खाजामुं अबबाय निनि बेबाक पैत गोरा ख्लायै बुसखांनि थिनां बासानानि बाखै नों बेलाय लाम गोदाल ख्लायै मानो ताकुबुखु हाइरो हाइ गोरोङै नायनो ककदुगु साबत हेलो जौ थांखा हाइनो हाइ खानाय तनाय रांसाखनि ताकुबुखु नरक जतनो कबक नाय नरक ककदुगु गोरोङै मानो नरकनि ककलब नरक चिनि हुकुमु नरकै ककलब तियार ख्लाय तनखाना चिनि हुकुमु मुकुमु हुकुमु तामनो हि फाइदि ताबुक जों किछा आबनो रायसावै नायलायानो हुकुमु साजाखौ हुक्न हुकुमुनि बुबाखनै चिनि बररक जे बररक कामि बिसिङ' आमचायो तंनाय बलं हालंग' तंनाय जों जेफ्रुफ्रुबो आगिनि सिमि ताबुक्त आसो गोरैथा ओंफानो

0: मान्नानि बाखै आव रांसकनि दाखु बखु अहासाखा वजत्निस्लाय गबांखु जरा रमै गथां तंगनाय तै थिप्लाया आबंखा सैमुं सैमुंनि फान जत्निस्लाय गबांखु आबुनि बाखै सैकंनो हामजाकदि सैक्रांगो सैकानके वानसुगुई खाकाउई जे ककनो जे वानसुक मानो नों तुमुं सैयै आबो ककलपनि गोरोंगो तुमुं सैयै मानखा होनके निनि बख्रकनि वानसुकमा आहायनो एरें तंनाय बररकनि वानसुकमानि सिलाय ते किसा जुदा आंगै नों नुकजाखनाय आबुनि बाखैनो साजागो सैनाय रक ताबुकनि जराव बाचाउई फायनाय बिसि बाराव ताम अंगैमान आबो बरक वानसुक हरै मानो आबुनि बाखैनो रांसाखनि ताखु बुखु सैनाय रकनो बरम रुदि तै सैमुं बाय गोदालनानि बाखै चायतकदि तिनि तंमानि खोना तंग्लाक खोना तंमानिबो सनिओ तंग्लाक आबुनि बाखै गोथांकुक तंग्रुकनानि बाखै एबा सामुं गाहामनि बिसिं जत्न सिलाय गाहामंखा सैमुं आबुनि बाखै नरक जतन कबकनाय ताबुकनि चालाय सिख्ला रक्नो दै जत सैग्रों रक्न कयनाय नरकनि सैजा कक्लपनो डेट रुइ बस हालो नों आबुनो ककदुकनि बिसिं तै निनि कक्लप आवाय ओंखा आर डेट रुइ नरक चिनि अरो नरकनि सैजाकनि हार्ड कपिनो रहरनानि नांनाय चिनि आकाशवाणी एफएमनि खापां याख्राय पान्दा ताल थामै वाइसा जों जत्न सिलाय गाहामखौ सैनाय खरकसानो जों सायै दुबनाय आबुनि बागै नरकनि हार्ड कपि जों नांगौ रांसाखनि दाखु बुखु नरक जतन कबकनाय सानानि बागै होनगा होनके नरक ककदुक्तै नरक साहर फानो नरक चिनरो ककदुकनि बिसिंतै या फानो आहायनो सैजाक रिटेन बाय नरक रहरिमानो आबोसों दादाक सिदाक नरकनि सिलाय फानो तैबो खसर रुवै स्मार्ट खालायै जों आबुनो परिवै खोनारनाय आबुनि बाखै रांसाखनि दाखु बुखु नरकनि सैजाक ककलब रक्न नरक रहरनानि चायतकदि अबसिनि जेफ्रु जों स्क्रुटिनि खायनाय एबा जेफ्रु जों सायनाय आफ्रु नरकनि हार्ड कपि चिनि यागो तंनानि नांनाय आव रांसाखनि दाखु बुखु खायनो हाय गोरोङै नायनो ककदुगु साबोदो हेलो
1: हेलो बाय दि फुं काहाम
0: बेलाय बेलाय खेनो फुं दिपर काहाम दाखु बेलाय न' तामनाय काहाम गोरों तंनाय रकनि खरां हायखेनो नों साहरखा ना काहाम गोरों नं नब्ला द ना सिंगिनो दं माने सादि
1: दंखा
0: दा
1: कक्लब
0: आच्छा कक्लब सादि বেলাই বেলাই কিন্তু হামবাই গরমানি বাকি সৈতে সৈতে হিংকে সৈমানি তেব গরা আংনাই ওয়ানসুকতে ওয়ানসুকতে নিনি বখরক তেব ওয়ানসুক মুং কুথুক বাই গরঙ্গি মাননাই আপনি বাকি চাওতে চায়া আমতে হিনে মুং সাকরি চায়ানি থায়ন চানাই আচায়ো এবার চায়ানি বিশিংতিন চাউইব থাঙ্গ আপনি বাকি খা বাইনানি ক

खनादनरंग सकनी थाखो बखो तबुक फायदी जो खनालायन तिरनी कक्तमानी बुबाग्रौ जो तुनी सकथार मूंग तई मानजाक मूंग हामसाजाक भारत सोनामनानी न सनाम तिसाई मानो हनै साखा मंत्री बख्रक नरेंद्र मोदी बंदे मादरम रिचाप मूंग सिमिया आबो भारतनी बसं हामजाक मूंग थानचा फान तई हामक्राइनी मारी हनै साखा हास्तेफा इंद्र सेना रेड्डी

नारी बागै वानसुक मुं याफारो फुंनि सालौ निनि बखा कियकमानि जुदा सारिकनि सालौ निनि बखा गरबमानि जुदा इ जुदा हाफारनो जेबरक जानाय माननाय इ जुदा तमुंनो एबा हाबारनि रायदानो जेबरक याकनि याफानि बिसिंगो वानसुकनानि जायतकनाय थिनां नरगै जेबरक इमां नुकनाय दफानरगै जेबरक इमां नुकनाय हामजाकमा नरगै जेबरक साखनु खिलिनाय हामजाकमा बरकनि मोखां बिनि वानसुकमंनि हाफारनो जेबरक वानसुक हरै माननाय ओ हा नखा ताल साल आथुगिरि नखबार वातै फेरां चुमै नायथतक हाबार बसुक दैमा दैसा दैज्लां दैरुगुं बसुक नायथतक खनाथतक सिनि कक कक मुं ककलब ककमां बसुक खनाथतक सिनि इ हा बेलाय नायथतक हिसनामजाक ओ जागाव मोजांजाक कायसा बसं सिरि सिदिनि सिबि बिनि सिनिमंनि मारि कचकते कचकते कचकते मुकुमुति सावै ताबुक बोखोथां ताबुक बरायसाजाक ताबुक बो इमां नुग्लायो रुं चगलायो यां पारनि आयां पारो थानानि बागै बसुक दैज्लां दैमुग्रक चिनि बुमुं साव चिनि कथमा रायसाव चिनि इमां बाय गोरोंजाक चिनि हाफार बाय गोरोंजाक जोंनो बामसावै दिसाव मर मुरकुति सावै मरके हकांनि कातिउि फाइमानि हाय जों ताबुकनि अजरा जेफ्रु गोथां दङो थिग्लाग नाहाय मा दङो नायथक आसुगनो नायथक हामजाकमा आसुगनो गोदै फियाबा सालसा बेबागनो मिलिं माला तंग्रोगनाय निनि सामुं सिमि नों कमाय थांनाय बैसाग सुद्दा बेबागनो हा ओंगै थांनाय तंग्रोगनाय निनि मुकुमु सिमि सैजाकनि मारि तंखांगे साजाक फ्लाइ दंनाय गुसुं गुसुं निनि मारि निनि सामुंनि बथाय तुमुंनो गोलांगै थांखानगे साजाक फ्लाइ दंनाय रोजा रोजा बिसिरमै निनि कक निनि इमांनि कक निनि चायतगलांमानि कक निनि दागिलांमानि कक नन उतुमनाय रोजा रोजा बरक तंनाय नन हामजाकनाय गुसुं गुसुं कुसुंनि बरक दंनाय रांसाकनि दाखु बुखु हायनो हाय गोरोङै नायनो ककदुगु साबो दं हेलौ हेलौ नरकनि सैजाकनो लांमनि मारि हायखे नरकनि वानसुक जाकनो बरक कायसा खरकसा बरकनो सोनाममानि हायखे सोनामै बारो तामनि हमालै सैमुंनि पैलाते बायथाक जरा आरो कायसा लांमा दङ ब दादाक सिदाक नों बै कक साया फानो ब निनि ककनो साव दादाक सिदाक केबो बाय ब थांगै हामजाक लायि मानिया फानो निनि हामजाकमानि कक ब साव दादाक सिदाक नों केबोनो जलि उइ वाराय जाग्या फानो नों वाराय जाकमानि कक ब सावै दङ दादाक सिदाक निनि खाकामानि कक नों केबोनो सावै मानिया फानो निनि सैजाक सैमारिर' निनि खाकामानि ककनो रायसावै दङ आबरकनो फान आबरकनो इमां रांसाकनि दाखो बुखु हायनो हाय ककदुगु हेलौ इहर इसाल इजरा अबतंगला नों तिनि जराय दंमोनि तिनि सालसानि निनि उमर खोना साल नै सनिखे सालथाम बांते बांते बांते गोबां मा बिसि बांते बांते बांते गोबां मा रोजा रोजा बिसि बांगै बोसाब बोसाब गोबां मा बर' रगनि गाहाम सामुं तांनाय रगनि बोसाब बोसाब लाइबुमा एबा कथमा जों मानो जों आबुनो परिलायो सिलायो किसा मिसा सायमाननानि बाखैबो जायतग्लायो रांसाकनि दाखु बुखु नरक जतनो गयनाय खापां याख्राय नरकनि बाखै खापां याख्राय नरकनि खानि ककनो सानानि गायसा थाय खाना सानानि बाखै खाबाय खानो खानानि बाखै खाबाय खानो गोरोंग्रोनानि बाखै निनि वानसुकमानो केबुनि थानै याफारनानि बाखै

0: खनाई तो नहीं रंग सकनी ताकु बुखुक आश्चर्य चढ़ाते ही चंग खना लिखा तिनी नी खापांग या खड़ाई पांडा जी बोरो तिनी नी ओ पांडा वो कॉक दुखनी बिशिंग ते करंग खा ते कॉकलव या फरखा बोरोक नो चौतो नो बेलाई बेलाई नो हाम बाई ते बो आंग खा खलायो कबांग मा बोरो करंगी मान लिया हनाई तामनी हमाले कबांग मा कॉक दुख करंग मानी उलो चौई थांगो कबांग मा बोरो वाइशा बाई जेफ्रु जे कॉक दुख नंबर नो गोरोंनानै एबा ककदुक नाम्बारो गोरोंनानै बागै जायथगौ आफ्रु कायसा कायसा ककदुक चौयै मा थांगौ आबुनि बागै नरक जतनन पाबगनै नरकनि ककलब हाथी ब्रुमन' खोनारनानै बागै नरकनि ककलबन' रिटेन एबा सैजाकन' चिनर रहरदि रिटेन तंनानै नांनाय एबा सैजाक तंनानै नांनाय जेफ्रु जों सायनाय तालथामनि उलो जेफ्रु जत्तनि सिलाइ गाहामखौ सैनायनो जों तिसाइ तुबुनाय दादाक सिदा खापां याख्राय बान्दाव नरबाय गोरों रोनानै बागै आफ्रु चिनियाखौ सैजाकनि मारि तंनानै नांनाय नरक जत्तनन कबकनाय नरक रांसाकनि सैनाय दै सैनाय जोगसंन कयनाय नरकनि सैजाक ककलबनो दादाक सिदाक आकाशवाणी एफएमनि खापां याख्राय बान्दाव रहरनानै बागै तिनि जराते आसोगनो तिरिनि खापां याख्राय पान्दा दाबुक जों चेंलायनाय ते केश पान्दा अबो नरकनि नासिंजाकनो मंखा नरकनि हामजाकमा चिनि खातुमा अ पान्दाओ जों दादाक सिदा ककदुकनि बिसिंथै नरकनि खनाथकजाकमानि रोजाबमुं ककबरक रोजाबमुंनो जों खोनारो नरक जतनेन कबगो नरक गोरोङै बान्नाय ककदुकनि बिसिंथै खनाथक रोजाबमुं खोनानानै बागै हेलो
1: दुर्गम भाइ
0: ए दीपक कहाँ तक खुशादी
1: आंगे हाथी होता मन किस कोमो छेन किस खैर किस तक हम भाई
0: फाइनल हाथी ओ हंके जे जाने जाने मुचुक मनी आपुन तो ये साई मानो के ए
1: तो मुझे जे खाते ना भाई
0: दो दो शादी
1: उन्हीं तो के मुझे आगे की चूस
0: हम
1: आगे की चूस

0: खायसुं वान सुंगै आंले तो खायसुं खायसुं वान सुंगै आंले न सावानि दाम हे गिसार दाम दं
1: अच्छा चंद्रानि ने ना नाइटुकनानि नांनाय दाखौ सखां बारिया तो ककरि
0: पानि आबो करिन दे सुमितानि म बसा करिन सुमितानि जेसे आबो तुमुं करिन हिके सुमितानि जेसे पानि दे
1: अच्छा अच्छा अच्छा चंद्रानि
0: तो आबो नै ने
1: एकटा आबो पानि दे आबो मेलेर हमबाय करे पानि पाके काम करन दं दे रंग साख्रि दाखौबो खायनो हाय जों खनाथ' दग्रु चापमुं खोनानाय नरकनि कबखर जाग्रु चापमुं अ जराव

0: रंगसक्ली ताको बखुक हैन हाई कर गए ना कॉक तो को शाबु तो हेलो हेलो
1: हेलो मैडम
0: बेलाई बेलाई के नोटी पर कहाँ शबुंग खा
1: हेलो मैडम
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो खनाई तुम ताको शादी
1: आंग पहले बांग नहीं सोचीं ना रोते ब्रुमा
0: दो दो दो शादी शादी
1: दोई कॉक तो करूंगा ले मैं
0: वही सबई गोबां बरक सैतुगी दंगमानी बागै अमतेंगो दसादि दाबुक सासिदि सौई थांगनासि प्रीति तामो
1: प्रीतिनि गान
0: निनि रसाबुनि कक थाइसि सादि
1: Yeah, 'cause you need to see me.

0: मनी
1: अंग्या खा चिकनी चामिली
0: ई चामिली होना ब
1: अच्छा
0: थाना पुरी दारका समान नाय नि समान प्रीति प्रीति रे समान गान
1: प्रीति ता म प्रीति देवर मादा
0: प्रीति देवर मा
1: अच्छा अच्छा दो आकुन आं चाय थक नाय खना रनानी बाकी ताखु मानखा हंगे जिसके फन खना रनाय दो बेलाय न हामबाय आउ रंगसाक्नि ताखु बुखु सों हाय न हाय खना लायने नरकनि कबखर्मनि रिजाब मुंनो और रिजाब मुं अजराव जतबाय गोरोंगै

0: हेलो
1: हेलो
0: सादी ताको खनाय दङो
1: जिबो काम बाय
0: दीपर काहाम
1: आं खयबार करे छि सादी दङो
0: अच्छा दो सादी
1: आं कासे जों खनाय बाय
0: ए सादी
1: आनि जतम खनानन तुमाखाय सोला रानी देवनम रिजर्व जा
0: अच्छा सुक्ला रानी नि
1: अपनि तो खा हिं समनि
0: अच्छा अ अखापांनि
1: नबो तो दङो
0: नायथुकना नांनाय दाखु ताबु खोनारि मानिया फानो तेगिसा पान्द फानो खोनार नाय दो दो सादि बबन बबन रनाय अच्छा खाकमाव

हाइड्रोजन बाय हीलियम सिमिसे तंगो आबोनी बाकी आबो हपुं सापुं खामुई मामां तंगो खाजुक्षों शालनी कचारो बुसक तुं जंग थपुईलाव तो खनाखा शालनी याफांगो बुसक तुं कचारो बुसक तुं फाइजी ताबुक्षों खना लायेनो शालनी कचारो तुंगो ब्रई पॉइंट बा कोटी डिग्री सेल्सियस 4.5 कोटी डिग्री सेल्सियस 4.5 कोटी डिग्री सेल्सियस शालनी कचारो तुंगमानी मारी शालनी कचारो कायबुसुक बुचाप एबा कायबुसुक बेरेम तं सानानी थांका हनके आजागाव कुर रेडिएटिव जून तै कन्वेक्टिव जून आबो शालनी बिसिंगनी जे स्टेप एबा स्टोर उंगयाखंगेबा आपनो बेरेम हनै मानो चिनी ककबाय आरो तंगो कुर तै रेडिएटिव जून तै कन्वेक्टिव जून आउ रंगसक्ति ताखुबुखु आसुक चराती चंग तिनी सायमान लाइखा सुरुंदी तै सिदी अबेचेबो शालनो रुकै तिनी अपान्दाव चंग सायमान लाइखा शालनी उमर ब्रैरा दक्ची कुटी बछरनि स्लाइबो गोबां बो खामप्लाय मामांनो दंगो बिनि खाममुंनो वनामा सिंसा आबो थैप्लाया बो खामै बुइनो एबा हायुंनि बररक्न पहर दुइ दंगो सालो हाइड्रोजेन ते हिलियम दंगो साल तालनि स्लाइ तरो 2,40,00,000 गुण साल चिनी पृथ्वी निस्लाई एबा हायुंग निस्लाई तरो 13,00,000 गुण आउ रंगसक्री ताकुबुखु कासक जराते चंग खनालाइखा तिनी सिरंदी सीधी ओ पांदाओ शाल नुरुकी तिनी पांदाओ ककलाम चंग शावी मान लाइखा

खनाइतौने रंगसक्नी ताकु बुखु आसक जरा ते जंग खनालाई खा सुरंगदी सीदी ओपांदाओ शाल नुरुगे कोकलाम कपुनी खाचुक्षों हाइनो हाई जंग रिजा पुनी हाफारो कितिंग लायो ने और जराओ थाशिंगो नुरुक्नी हमसक मा सिनी खातुक मा ओपांदाओ यासक साक रिजा पुरो तोंखो खनारी मानबाई सुग्या को आबुनुनो ताबु खनारनानी बाकी चाइतोक नाई कपुनी खाचुक्षों खनादी और जराओ और रिजा पुनो

सामने चूल्हा जल रहा है, धुआं आंखों में लग रहा है, जलन भी है आनंद भी। बस आते ही होंगे, जल्दी से संध्या पूजा हो जाए। जानती है वो क्या कहेंगे।

फागुन की रात दक्षिण की हवा चलती है राह नहीं मिलती। फागुन की रात दक्षिण की हवा चलती है राह नहीं मिलती। जो चाहा था वो भूल हुई, जो पाया है वो चाह नहीं। मैं घूमता हूँ, मैं घूमता हूँ, मैं घूमता हूँ।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 10वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा नारी से नारायणी तक। इसमें भाग ले रहे हैं शिक्षाविद प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: नमस्कार। एक बेटी जो कभी स्कूल की दहलीज तक पहुँच ही नहीं पाई, एक माँ जिसके लिए रोजमर्रा के जीवन में रसोई का धुआं एक अहम स्थान बन गया था, एक ग्रामीण महिला जिसकी मेहनत परिवार की ताकत तो थी लेकिन उसकी पहचान सिर्फ चार दीवारी तक सिमट कर रह गई थी। महिलाओं की यह बेरंग तस्वीर साल 2001 साल 2002 के आसपास बहुत ज्यादा नजर आने लगी थी। उसी समय अपनी रचनात्मक सोच और दूरदर्शिता से तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने महिलाओं की इस बेरंग तस्वीर में रंग भरने की शुरुआत की। गुजरात से शुरू हुई कन्या केलावणी और शाला प्रवेश उत्सव जैसी योजनाएं आगे चलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला, लखपति दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप और ड्रोन दीदी तक पहुंच गई। और यही नहीं रुकी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करें या तीन तलाक से जुड़ा सुधार, सबकी कोशिश यही थी कि बेटियों को शिक्षा मिले और महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जब बेटियों और महिलाओं को बेहतर करने की सोची तो उसके पीछे की सोच बिल्कुल स्पष्ट थी कि एक नारी की प्रगति से सिर्फ एक नारी का विकास नहीं होता बल्कि एक परिवार, एक समाज और एक राष्ट्र की तरक्की की शक्ति प्रदान होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आधारित आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के आज के एपिसोड की थीम है नारी से नारायणी। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तकरीबन 25 साल पहले गुजरात में लड़कियों की शिक्षा को लेकर स्थिति बेहतर नहीं थी और जो बच्चियां पढ़ने जाती भी थीं स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा थे। तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने वहां के आईएएस अधिकारियों के साथ गांव के सरपंच मुखिया को लेकर गर्मी की चिलचिलाती धूप में गाँव तक गए और परिवारों को बोला कि आप अपनी बच्चियों को स्कूल भेजिए और स्कूल में उनका स्वागत किया गया, उनको उपहार दिए गए, उन्हें ऐसा फील कराया गया कि आप एक विशेष जगह पर आई हैं। और फिर आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 99% ड्रॉपआउट रेट कम हुए। गुजरात में ड्रॉपआउट रेट कम करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम था शाला प्रवेश उत्सव। क्या थी योजना, किस सोच के साथ शुरू हुई और क्या रहे इसके परिणाम, आइए सुनते हैं इस विशेष रिपोर्ट में।
3: गुजरात में शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने और बच्चों का स्कूल में दाखिला सुनिश्चित करने के लिए हर साल शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया जाता है। शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी। इसके तहत राज्य के मंत्री, अधिकारी और स्थानीय प्रशासन गांवों और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचते हैं और बच्चों को स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

0: हैं। इस पहल के साथ बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कन्या केलवड़ी कार्यक्रम भी चलाया जाता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सिर्फ बच्चों का नाम स्कूल में दर्ज कराना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे नियमित रूप से शिक्षा से जुड़े रहें। खास तौर पर पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों और स्कूल से बाहर रह गए बच्चों पर ध्यान दिया जाता है। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान जन प्रतिनिधि और अधिकारी बच्चों और उनके परिवारों से सीधे संवाद करते हैं। इससे अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने और स्कूल में दाखिले को लेकर उनकी झिझक दूर करने की कोशिश की जाती है। गुजरात के समग्र शिक्षा पोर्टल के अनुसार राज्य में सरकारी और निजी स्कूलों की बड़ी संख्या मौजूद है। अगस्त 2026 तक राज्य में 40,554 सरकारी और 13,905 निजी स्कूल दर्ज हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में करीब 61,15,000 लड़के और 52,35,000 लड़कियां दर्ज हैं। शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। गुजरात के वर्ष 2024-25 के समग्र शिक्षा वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दिव्यांग बच्चों की पहचान और उनके नामांकन के लिए घर घर सर्वे किया गया। इसी वर्ष 68,629 दिव्यांग बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप कक्षाओं में नामांकन कराया गया। इनमें 2,770 बच्चे बाल वाटिका और 4,201 बच्चे पहली कक्षा में दाखिल हुए। राष्ट्रीय स्तर पर भी स्कूलों में नामांकन और बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने को प्राथमिकता दी जा रही है। शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में सार्वभौमिक पहुंच, बुनियादी ढांचे, मुफ्त पाठ्य पुस्तकों और पात्र बच्चों के लिए मुफ्त यूनिफॉर्म जैसी सुविधाओं के लिए सहायता दी जाती है। इसमें नामांकन और बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लिए विशेष अभियान भी शामिल है। यानी शाला प्रवेशोत्सव सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि बच्चों को स्कूल की दहलीज तक लाने और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की एक सामुदायिक कोशिश है। क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए स्कूल का पहला कदम उसके भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम हो सकता है।
1: यही योजना आगे चलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में तब्दील हुई और हमने देखा कि किस तरीके से लैंगिक अनुपात भी भारत में बेहतर होता नजर आया। सुशीला जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं, कैसे देखती हैं इस पूरे सफर को आप?
2: आप जो कह रहे हैं कि जो गुजरात में जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जिसकी वजह से बहुत फर्क आया, ये अगर हम एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए आधुनिक भारत का, तो दो चीज कहूंगी मैं और फिर हमारी जो विशेष टॉपिक है उसके कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहूंगी कि आधुनिक भारत जो हम पढ़ाते हैं जो पढ़ते हैं ये इसकी शुरुआत राजा राममोहन रॉय से हुआ था, जब उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन थॉट कहा जाता है, इंडियन रेनेसां, उस टाइम से ये शुरुआत हुई थी कि नारी की जो स्थिति है जब तक उसमें सुधार नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकते। फिर उनके बाद जो राणा डे, फिर विवेकानंद और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इतने सारे महारथी थे जो उन्होंने इस पे बहुत गहराई से सोच के कदम उठाए। जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुई थी, गांधी जी का जो योगदान था वो सबसे महत्वपूर्ण था। उन्होंने अहिंसा का जो मार्ग चुना स्वतंत्रता के लिए, उससे जो है बहुत सारे परिवारों में एक तरह का कॉन्फिडेंस आ कि अगर हमारी बेटियां, हमारी जो माएं हैं, अगर पब्लिक स्पेस जो कहते हैं वहां पे जाएंगे, गांधी जी हैं तो सुरक्षित है। और महिलाओं का बहुत योगदान था, और गांधी जी खुद कहते हैं उनकी माँ और साउथ अफ्रीका के जो नारी शक्ति थी उसके वजह से उनको वो समझ आई क्वालिटीज लाइक टॉलरेंस, किस तरह जब एंगर और जो गुस्सा कैसे एक नारी जो है बिना रिएक्ट करे उसको कैसे अब्सॉर्ब करके उसको कैसे चेंज करती है। तो ये सारे उन्होंने कहा कैसे उन्होंने अपने सत्याग्रह पे इनकॉर्पोरेट किया। जब संविधान बनी, भारत ऐसा एक संविधान है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नारी को भी एक समान हक दिया गया था, हम लोगों को लड़ाई ज्यादा नहीं करना पड़ा राइट टू वोट के लिए, सबको समान रूप से मिला। और खासकर एक चीज बताना चाहूंगी, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इंडिया में उनको इक्वल पे इक्वल वर्क, जो हमें और जगह और कंट्रीज में भी नहीं मिलता। अभी भी आप अगर यूएन रिपोर्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इतना फर्क है एक पुरुष की जो पे स्केल और एक औरत, ये हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। फिर मैं ये कहना चाहूंगी 1970 में जब यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमन का जो घोषणा किया
1: जी।
2: तब 1969 में एक कमेटी की स्थापना करने की कोशिश हुई थी जो वीना मजूमदार उन्होंने हेड करा, और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार करी थी टुवर्ड्स इक्वालिटी। उसके लिए जो गाइडलाइंस दिए गए थे वो यही था कि हम नारी को कैसे उनकी जो स्थिति है उसको कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि नारी पीड़ित ही नहीं है पर उनके वजह से इतने सारे लोग भी पीड़ित है, उसमें पुरुष

0: भी माने जाते हैं, और अल्पसंख्यक और जो कमजोर वर्ग। तो ये जो ढांचा है, जो बिल्कुल एक कहते हैं ना पेट्रियोकल, जो बड़ा ओप्रेसिव एक्सप्लॉयटेटिव, इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? जैसे आपने बताया, नारी के लिए शिक्षा, नारी के लिए एक आर्थिक सेफ्टी नेट जो बोलते हैं, ताकि वो जो कमा सकती है वो अपने हाथ में रखे डिसाइड कर सकती है। तो इस लेगेसी को एक बहुत अच्छा दिशा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि उन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर एंड देन एज अ प्राइम मिनिस्टर, ये उनका एक विजन रहा है शुरू से कि हमें जो नया भारत का निर्माण करना है उसमें महिलाओं की इक्वल भागीदारी देना है। उन्होंने जब आई थिंक 2014 या 15 मुझे याद नहीं है, रेड फोर्ट से जब उन्होंने एक आज़ादी के पर्व में जो प्राइम मिनिस्टर की जो भाषण होती है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम हर वक्त कहते हैं कि नारी की शिक्षा, नारी की स्थिति में कैसे फ़र्क लाएं, ये तो हम ध्यान देते हैं, पर हम अपने बेटों के बारे में सोचते नहीं हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो परवरिश है, उनको कैसे सिखाया जाए कि अपने घर में जो बहन है, माँ है, बाद में बीवी आएंगी, उनके प्रति कैसे समान रूप से उनको हक, उनकी डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट, ये जो सोच था ना, ये की थी। क्योंकि हम हर वक्त फोकस करते हैं विमेन के ऊपर, और मेन जो है आदमी को सोचते हैं कि जैसे वो अपने आप सुधर जाएगा। तभी तो कहते हैं एक नारी को शिक्षा दो पूरा परिवार शिक्षित होती है, वो सही है, पर सोच में जो फर्क लाना चाहिए वो बहुत जरूरी है। और मैं ये मानती हूँ मोदी जी ने जो ये बात उठाई और फिर उनके जो जितने भी कार्यक्रम हैं और जितनी भी योजनाएं हैं, ये इसी पे जो एक तरह का केंद्र बिंदु कह सकते हैं ना, ये मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है उनके योगदान में।
1: थोड़ा सफर आगे बढ़ाते हैं आदि जी, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रधानमंत्री ने शुरू किया, और तब हरियाणा जैसे राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं थी, वहां बेटियों को लेकर एक अलग सोच थी। अगर उस समय के लैंगिक अनुपात की बात करें तो 918 के आसपास पूरे राष्ट्रीय लैंगिक अनुपात था, जो बाद में बढ़कर इस समय 937 पर पहुंच गया है, जो ये बताता है कि बेटियों को लेकर पिछले 25 वर्षों में उनकी दूरदर्शिता से सोच बदली है। बतौर पत्रकार जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आप महसूस करती हैं?
2: देखिए, जो सबसे बड़ा बदलाव नज़र आता है, ना सिर्फ पत्रकार के तौर पर बट एक जनरल आम सिटीज़न के तौर पर, वो ये आता है कि जो अप्रोच है महिलाओं को लेकर, कि जैसे पहले था कि एक वेलफेयरिस्ट अप्रोच थी कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, सशक्तिकरण का जो प्रकरण है वो हर सरकार के टाइम चला है, सबने कोशिश की है। इस सरकार में जो बदलाव देखने को मिला वो ये था कि एक महिला लेड डेवलपमेंट की तरफ पॉलिटिकल सोच का बदलाव, जैसा कि अभी सुशीला जी ने कहा कि एक पॉलिटिकल लीडर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है, समाज को कैसे बदला जा सकता है, वो सिंबोलिज्म से बदला जा सकता है। आप किस तरीके का मैसेज समाज को दे रहे हैं, महिलाओं के प्रति आप क्या सोच रख रहे हैं। गवर्नेंस का पूरा मॉडल जो है वो विमेन वेलफेयर से बदल कर विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और वो एक कॉन्टिन्यूम है, वो आप पॉलिसी में भी देख सकते हैं। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र किया, वो एक बहुत मेजरेबल आउटकम हमें अब नजर आने लगा है, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो स्टैटिस्टिक्स अभी आया है, और हमने देखा कि जो ओवरऑल सेक्स रेशो है वो पहली बार 1000 से ऊपर भी चला गया, 1020 भी हो गया, 1000 पुरुषों के प्रति 1020 महिलाएं हो गईं। तो इन इंडिकेटर्स में ये जो माइंडसेट अप्रोच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से बदलने की कोशिश की गई है, समाज को ये मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि जो महिलाएं हैं वो ड्राइवर्स हैं इकोनॉमी की, वो ड्राइवर्स हैं ग्रोथ की, वो विकसित भारत की यात्रा में एक म्यूट स्पेक्टेटर्स नहीं हैं, वो इक्वल पार्टिसिपेंट्स हैं। उसी तरफ हर स्कीम अगर आप उठा के देखें सरकार की, महिलाओं के प्रति जो भी स्कीम्स लागू की गई हैं उनका मोटा मोटा पर्पस ये है कि महिला को, मतलब ऐसा नहीं कि हमें उनको डोल देना है कि हमने ये दे दिया हमने वो दे दिया कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, बल्कि उनको डिसीजन मेकिंग टेबल पर इक्वल भागीदारी देने का एक मकसद है। वही रिफ्लेक्ट हो रहा है सेक्स रेशो में, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है अगर आप स्कूली स्तर पर देखें, प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट रेट काफी कम हो गया है, जो नेशनल लेवल पर अगर आप ड्रॉप आउट रेट देखें इस वक्त शायद 1.9% है, जो काफी एनकरेजिंग है। इट्स नॉट इनफ, वो बिल्कुल जीरो होना चाहिए, लेकिन काफी हद तक सुधार हुआ है। ये जो आपने पॉलिसीज का जिक्र किया, जैसे आपने कहा शाला प्रवेशोत्सव, गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने अपने चीफ मिनिस्टर काल में लागू की थी मेरे ख्याल से 2003 में, और वो अब बढ़ बढ़कर उसका रिजल्ट ये हुआ है कि एक आम तौर पे पूरा का पूरा समाज ये मानने लगा है, गरीब

0: आज भी, कि लड़कियों को स्कूल भेजना एक रूटीन है, यू नो एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्म है। जो पहले एक्सेप्शन था वो अब नॉर्म है, ये बदलाव है।
1: 2015 से शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने अपने 11 वर्षों के अब तक के सफर में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। आइए सुनते हैं इस पर एक रिपोर्ट।
2: किसी भी समाज की प्रगति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ बेटियों को कितने अवसर मिलते हैं। बेटी का जन्म, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता, ये केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज के विकास से जुड़े सवाल हैं। इसी सोच के साथ 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य था लड़कियों के प्रति समाज की सोच में बदलाव लाना, लिंग आधारित भ्रूण चयन को रोकना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। समय के साथ यह अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम न रहकर बेटियों के अधिकार और उनके भविष्य को लेकर जागरूकता का एक व्यापक प्रयास बना। इसमें परिवार, स्कूल, स्थानीय समुदाय और अलग अलग सरकारी विभागों की भागीदारी पर जोर दिया गया। अगर आंकड़ों की बात करें तो माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 2014-15 के करीब 75% से बढ़कर 2025-26 में 83.4% हो गया। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बेटी का जन्म हो रहा है या नहीं, सवाल यह भी है कि क्या उसे पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने फैसले खुद लेने का अवसर मिल रहा है। अब बात गुजरात की। गुजरात में बेटियों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए गए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना इसका एक उदाहरण है। जनवरी 2026 तक गुजरात डाक परिमंडल में बालिकाओं के नाम 16,35,000 से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके थे। इन खातों में 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा थी। उत्तर गुजरात में भी इस दिशा में विशेष अभियान चलाया गया। 2024 में क्षेत्र के 487 गांवों को संपूर्ण सुकन्या समृद्धि ग्राम घोषित किया गया। इन गांवों में पात्र बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि खाते खोलने पर विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन किसी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने का मतलब सिर्फ उसके नाम पर बचत खाता खोलना नहीं है। उसे स्कूल तक पहुंचाना, पढ़ाई जारी रखने के लिए परिवार को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह जैसी चुनौतियों से बचाना और आगे चलकर कौशल तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है। गुजरात में कन्या केलवड़ी और शाला प्रवेशोत्सव जैसे अभियानों ने भी बालिकाओं को स्कूल से जोड़ने और शिक्षा के महत्व को घर घर तक पहुंचाने पर जोर दिया है। इन पहलों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की व्यापक सोच के साथ देखा जा सकता है, जहां बेटी के जन्म से लेकर उसके शिक्षा और आत्मनिर्भरता तक हर चरण को महत्व दिया जाता है। क्योंकि जब एक बेटी पढ़ती है तो उसका असर सिर्फ उसकी जिंदगी तक सीमित नहीं रहता। शिक्षा उसे अपने अधिकार समझने, बेहतर फैसले लेने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने का रास्ता देती है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश सिर्फ इतना नहीं है कि बेटी को बचाना है और पढ़ाना है, संदेश यह भी है कि बेटी को अपने सपने देखने और उन्हें पूरा करने का समान अवसर देना है। और यही सोच आगे बढ़कर महिला नेतृत्व वाले विकास की मजबूत नींव तैयार करती है।
1: सुशीला जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शिक्षा से हम आगे बढ़ें तो एक योजना जिसने बहुत ज्यादा ध्यान खींचा वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आप सभी ने घरों में खाने बनाए और हमने अपने बचपन में देखा कि हमारी माँ लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया करती थी, धुआं बहुत निकलता था, आंखों से आंसू निकलने लगते थे। इस सोच को और इस समस्या को दूर करने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई और आज तकरीबन भारत में 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को इस योजना से रसोई गैस उपलब्ध कराई गई है, जिससे उनका सेहत बेहतर हुआ है, सामाजिक सुरक्षा के स्तर पर बेहतरी देखने को मिली है और जिसे कहते हैं कि महिलाओं का समग्र विकास हुआ है। कितना बड़ा गेम चेंजर मानती हैं आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को?
3: देखिए, जो आपने कहा ना, हम सब ने देखा है अपनी माओं को, मेरे तो अपनी माँ को नहीं देखा, क्यों कहते हैं ना इंडिया वर्सेस भारत
1: जी।
3: शुरू से था जो रूरल अर्बन डिवाइड, रूरल एरियाज में ये सब जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो वो जरूर था, अभी भी शायद होगा
1: जी।
3: पर परसेंटेज कम है, क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान है एक तो बहुत विशाल देश है, समस्याएं बहुत थी। 300 साल का जो राज था अंग्रेजों सरकार का, जो कलोनियलिज्म, आप जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कितना कुछ लूटा गया इस देश से। तो उस सबको जो बदलने के लिए बहुत टाइम भी लगता है और प्रयत्न भी होते हैं। और हिंदुस्तान में ना 10 सेंचुरी जो है, 100,000 साल एक साथ जीता है, हमें ये भी मान के चलना पड़ता है। तो शहरी इलाकों में खासकर गैस चूल्हा ही देखा है हमने, मेरे परिवार में।

0: मेरे मित्रों के परिवार हम लोगों ने, हाँ टाइम लाइक जब युद्ध हुआ, बांग्लादेश युद्ध हुआ, तब हम सब ने जैसे आप कह रहे हो चूल्हा में खाना बना के देखा हुआ है, बट रूरल इंडिया में ये नहीं था। जो फर्क जो आया है उसके वजह से वो डेफिनेटली एक गेम चेंजर है। और इंक्रीजिंग एक और जो कॉन्शियसनेस देश में ही नहीं पूरा विश्व में, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, कि ये जो कार्बन एमिशन है, ये चूल्हा जलाने की वजह से जो कार्बन एमिशन है उसका भी एक टैकलिंग दैट प्रॉब्लम। सो यस, जो खाना बनाते हैं घरों में उसके वजह से उनका जो हेल्थ है, सुविधा है, और देखिए घर का खाना हर वक्त कहा जाता है इट्स अ वेरी हेल्थी वन। सो द एम्फेसिस कि घर में खाना बना के टाइम जो है उसको एक अच्छी तरह यूज करिए। टाइम जो है 24 घंटा हर एक के पास होता है, उस टाइम का हम कैसे उपयोग करें? अगर चूल्हा में ही सारा टाइम निकल जाता है, कितनी सारी कहानियां पहले पढ़ते थे, एक औरत का जो टाइम है सिर्फ चूल्हा चौके में गुजरता है, अब तो वो टाइम भी बचत होती है। और उस टाइम की जो सेविंग की वजह से लोग बहुत कुछ जो सीख सकते हैं। बहुत बार मैं देखती हूँ कि रूरल इंडिया का जो एक साइड है जो सोशल मीडिया में नजर आती है कि इनके पास टाइम की वजह से ये कितने अपने जो हुनर है, अपनी जो कला है, वो अपना सोशल मीडिया में रील्स बना के फैलाती हैं। तो ये जो टाइम की बचत से ये सब जो कर पाते हैं, ये भी तो एक बहुत गेम चेंजर है कि खाना भी बन जाता है सुविधा के अनुसार, कार्बन एमिशन इन अ वे लेस, एंड एट द सेम टाइम इतना टाइम मिलता है फॉर देम टू लिव अ गुड लाइफ। बिकॉज आधुनिक समाज का जो एक बहुत खास बात है, हमारे पास जो है सुविधा है जो जिससे हम एक अच्छा लाइफ गुजार सकते हैं, पर उस सुविधा को सबके लिए देना ये मोर चैलेंजिंग है। आई थिंक ये जो प्रयास रहा है इस सरकार का कि इतने सारे लोगों को जितने मैक्सिमम लोगों को दे सकते हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा, आई वुड से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। इट्स नॉट कन्फाइंड टू स्मॉल सेगमेंट्स द प्रिविलेज्ड वन, इट इज फॉर एज लार्ज अ सेगमेंट्स। तो इसमें आप नॉट वेरी वेल ऑफ उनको भी जोड़ देते हैं, ये इन अ वे इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट।
1: जी हाँ, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अदिति जी। एक और योजना जिसने महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई, जब भी हम बात स्टार्टअप की करते हैं, जब भी बात हम कहते हैं कि आत्मनिर्भरता की, पुरुषों का जिक्र होता है, लेकिन लखपति दीदी जैसी जो योजनाएं हैं उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं को प्रेरित किया कि आप भी हर महीने 1,00,000 रुपए तक कमा सकती हैं, और इनका आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री ने कहा भी कि महिलाओं को किसी दूसरे पर निर्भर रहने की अब इस विकसित भारत की यात्रा में जरूरत नहीं है। लखपति दीदी को कैसे देखती हैं?
2: देखिए, लखपति दीदी प्रोग्राम जो है वो एक बहुत सारे बाकी प्रोग्राम्स के नींव पर रखा गया है। फॉर एग्जांपल, आप अगर देखेंगे जो जनधन अकाउंट्स खोले गए पहले, हम उसको जैम ट्रिनिटी के नाम से जानते हैं, जनधन अकाउंट्स, आधार आइडेंटिफिकेशन और मोबाइल एक्सेस, ये तीन चीज़ें जब महिलाओं के हाथ में दी गई, उसका पर्पस ये था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का, वो होता है कि आपको बैंकिंग और क्रेडिट का एक्सेस मिलता है कि नहीं। सबसे पहले हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी के माध्यम से बहुत सारे अकाउंट्स खोले गए। हम सब जानते हैं कि आज की डेट में करीब 60 करोड़ अकाउंट्स खोले जा चुके हैं, और जो बैंकिंग की सुविधा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और इन 60 करोड़ में से, अगर आंकड़े मैं सही कह रही हूँ, मेरी याददाश्त यही बताती है कि करीब 50% से ज़्यादा महिलाओं के नाम पे हैं।
1: जी।
2: आपने सबसे पहले उनके अकाउंट्स खोल दिए, उसके बाद आपने मुद्रा योजना लागू की, मुद्रा योजना के माध्यम से आपने इजी क्रेडिट महिलाओं को देना शुरू किया, उनके अकाउंट्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, उसमें पैसे आने लगे, महिलाओं को क्रेडिट मिलने लगा छोटे छोटे कामों के लिए। तो महिलाएं अपनी अपनी जगह कोई रेडी लगा सकती है, कोई अपनी दुकान चला सकती है, कोई खाना बना सकती है, टिफिन की सर्विस शुरू कर सकती है, छोटा छोटा क्रेडिट उनके हाथ में आने लगा। सशक्तिकरण का ये जो सिलसिला है ये वहां से शुरू हुआ। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज ये है कि जब महिलाएं एक लेवल पर आकर सेटल हो गई, तो आप उनको और फिलिप कैसे देंगे? उस फिलिप के लिए अब ये लखपति दीदी योजना का इम्पोर्टेंस है। ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि ये संगठित तरीके से महिलाओं को सशक्त करने का एक माध्यम है कि एक साल में हर महिला 1,00,000 रुपए कमाने का सामर्थ्य रखे। उसके लिए क्या किया गया है? बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स इवॉल्व किए गए हैं। पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक पूरा नेशनल नेटवर्क क्रिएट हुआ है, एक पूरा मूवमेंट चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तेजी से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बढ़ रहे हैं हमारे देश में, ऑर्गेनाइज तरीके से महिलाएं एक दूसरे की मदद कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं, आज की डेट में 95,00,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भारत में हैं, और इन 95,00,000 ग्रुप्स में करीब 10 करोड़ महिलाएं मेंबर्स हैं। तो आप संगठित तरीके से SHGs के माध्यम से जुड़ चुके हैं।

0: इन एसएचजीज को अब लखपति दीदी प्रोग्राम में क्या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं? फॉर एग्जांपल आप नमो ड्रोन दीदी प्रोग्राम ले लीजिए, वो प्रोग्राम क्या है? उस प्रोग्राम का जो फाउंडेशन है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप ही है
1: जी।
0: कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 2023 से 2026 तक की यह स्कीम है जो बढ़ाई जाएगी आई एम श्योर। 1200 करोड़ इसका आउटले रखा गया। 15,000 एसएचजीज को आप ड्रोन सप्लाई करेंगे। ड्रोन किस लिए सप्लाई करेंगे? कि आप उनको ट्रेनिंग देंगे एसएचजीज की महिलाओं को, कुछ चोजन महिलाओं को जिनका उस चीज में इंटरेस्ट होगा। हर कोई महिला का इंटरेस्ट भी नहीं होगा, तो ड्रोन के माध्यम से आप उनको ये सिखाएंगे कि फार्मिंग की प्रैक्टिसेस, आप एग्रीकल्चरल फार्म लैंड्स पर पेस्टिसाइड्स कैसे स्प्रे कर सकते हैं, आप सीड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ड्रोन के माध्यम से। तो ये एक माध्यम बन जाता है सशक्तिकरण का, और इससे पैसा बनते बनते फिर वो लखपति दीदी के प्रोग्राम में ऐड होता रहता है। जैसे पहले लखपति दीदी प्रोग्राम के तहत मुझे लगता है 3 करोड़ महिलाओं को रीच करने का टारगेट था, जो अब बढ़ा के शायद 6 करोड़ या 5 करोड़ कर दिया गया है। बहुत एम्बिशियस टारगेट है, पर पुराने प्रोग्राम्स ने दिखाया है कि ये अचीवेबल है।
1: जी हाँ, अदिति जी, एक और योजना की बड़ी चर्चा रही वो नीतिगत सुधार देखने को हमें मिला, मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत 3 तलाक का जो सुधार हुआ उसमें एक बहुत ही सामाजिक परिवर्तन देखने को मिला। आंकड़े बताते हैं कि 80% तक तलाक की दर कम हो गई। एक सामाजिक परिवर्तन को लेकर जो ये निर्णय लिया गया और प्रधानमंत्री की जो इसके पीछे की सोच थी, जमीनी स्तर पर कितना बदलाव आपको नजर आया?
0: देखिए, मुस्लिम महिलाओं की जो आम तौर की जिंदगी में इस लॉ का बहुत बड़ा महत्व है, और ये बहुत ज्यादा अगर ओपनली वो बोल भी नहीं पाती होंगी तो भी उनकी जिंदगी में जो इसका असर है वो आई एम श्योर हर लेवल पर नजर आता होगा। क्योंकि इस लॉ से ये हुआ है कि एक तो डिग्निटी मैरिज में बरकरार हुई है, एक एश्योरेंस मिला है मुस्लिम महिला को कि उसके साथ जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन होता था कुछ प्रैक्टिसेस की वजह से, और ऐसा भी नहीं है कि इस्लाम में ये प्रैक्टिसेस मान्य हैं, और बहुत सारी डिस्टॉर्शंस रिलीजन के माध्यम से आ जाती हैं आमतौर के डिबेट्स में, जिसकी वजह से ये एक आम चर्चा में हो गया था कि ये चलता है। उस चलता है एटीट्यूड को तोड़ने के लिए जो ये 3 तलाक के कानून को लाया गया, क्रिमिनलाइज किया गया इस प्रैक्टिस को। हम सबको पता है कि शाह बानो का केस कितना फेमस हुआ था, और फिर उस वक्त की राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की एलमनी का जो डिसीजन, इतने जंदोजहद के बाद शाह बानो ने एक एलमनी का डिसीजन जीता था सुप्रीम कोर्ट से, और फिर उस वक्त की सरकार ने उसको ओवरटर्न कर दिया था लॉ लाकर। तो वो एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस, बहुत लोगों ने ऐसा माना कि 3 तलाक के कानून से करेक्ट किया गया, क्योंकि आपने फाइनली ये बोला कि आप इस तरीके का बिहेवियर मुस्लिम महिला तो क्या किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि कुछ रिलीजन स्पेसिफिक इशू है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट हमारे देश में चल रही है, अगर एक कॉमन पर्सनल लॉ पूरी कंट्री के लिए होगा तो ये जो कुरीतियां हैं किसी भी समाज में हो वो उनसे लड़ने की ताकत महिलाओं को मिलेगी। तो जो सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त कहा था, और ये उम्मीद की थी कि आने वाली सरकारें इनैक्ट करेंगी ऐसा एक लॉ, तो इसी उम्मीद से की थी कि हम आने वाली सरकारों पे छोड़ते हैं कि उस वक्त की सामाजिक स्थिति क्या होगी, उस वक्त की राजनीतिक इंपेरेटिव्स क्या होंगे, उन सबको ध्यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने की थी और कहा था कि आने वाली सरकारें इस चीज को देखेंगी। तो ये जो मुस्लिम महिला की आपने बात की, ये एक तरीके से पर्सनल लॉ की ही रिफॉर्म की तरफ कवायद है कि आप किसी भी महिला को, वो किसी भी रिलीजन में हो, इस तरीके से तो ट्रीट नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो फिर गवर्नमेंट को अपनी साख दिखानी होगी। गवर्नमेंट इसीलिए है कि उसमें एक पावर है चीजों को बदलने की, और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है जिससे मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करने का एक मौका मिला है।
1: सुशीला जी, चर्चा को अगर थोड़ी आगे बढ़ाएं तो घर की 4 दीवारी में तो महिलाएं काफी समय से सक्रिय रहीं, लेकिन नेतृत्व के मेज तक उनको लाना अपने आप में एक बड़ी बात थी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में लाना। हमने देखा कि जब भारत में G20 की अध्यक्षता की भारत में और नई दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ वहां पर महिला नेतृत्व को प्रमुखता दी गई। साथ ही साथ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने देखा कि महिलाओं ने किस तरह फाइटर जेट के माध्यम से दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने में अहम भूमिका निभाई। युद्ध के मैदान से देखें या अंतरिक्ष तक देखें या फिर खेल के मैदान में देखें, महिलाएं न सिर्फ आगे आ रही हैं बल्कि निर्णायक स्थिति में भी पहुंच रही हैं। ये परिवर्तन जो पिछले 25 वर्षों में हुए हैं और इसके पीछे नरेंद्र

0: खुदी की एक अहम सोच रही है, कैसे देखती हैं आप?
1: मैं इसको अगर एक रेफरेंस दूंगी, 1968 में गुणल मुरल की एक किताब आई थी, एशियन ड्रामा। उसमें मुरल साहब लिखते हैं, इज अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट, कहते हैं कि पूरा साउथ एशिया का एक सर्वे था, हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं कि इट इज अ कंट्री वेयर इट हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वीमेन इन डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। मिड 60s बीच में कहीं गायब हो गई, तो शुरुआत जो था कहीं जो गायब हो गई थी उसको पिकअप किया गया, और कि वीमेन शुड बी फाउंड इन इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज इन प्लेसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों पीछे रह गया उसकी एनालिसिस करिए और उसको रेक्टिफाई कैसे करना चाहिए। और खासकर हम जब नारीवाद पढ़ाते हैं, हर वक्त कहते हैं कि नारीवाद जो है ना एक मिडिल क्लास मूवमेंट रह गया, ये सिमोन द बोअर का क्रिटिसिज्म है, सिर्फ मध्यम वर्ग के जो वीमेन है उन्हीं के बारे में चर्चा है, उन्हीं की कंसर्न्स है, इसीलिए आम महिला जो है उसके साथ जुड़ती नहीं है, क्योंकि वीमेन एज अ कैटेगरी वो जो है ना ऐसा है ही नहीं। उसमें जेंडर आप देखोगे इम्पोर्टेंट है, पर उसके साथ आपको क्लास, कास्ट, रिलीजन, रीजन ये सब भी देख के चलना पड़ता है। मेरा जो कहने का मतलब है कि आपकी जो प्रोग्राम्स, उसकी जो विजन ऐसी होनी चाहिए कि आप जितना ये प्रोग्राम्स एक शिक्षित, हाईली वेल प्लेस्ड वीमेन अपील करती हैं, उसी तरह एक ऑर्डिनरी वीमेन को भी, जब तक आप उस तरह का एक ब्रॉड स्वीप नहीं रखोगे, कैच ऑल जो बोलते हैं, तब तक जो है ना सारे वीमेन जुड़ेंगे नहीं। जो मध्यम वर्ग की वीमेन के जो कंसर्न, स्त्री के जो कंसर्न है और आपके घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है उसके जो कंसर्न है, वो बहुत हटके होते हैं। कहने को दोनों महिला हैं, यही मैं कहना चाह रही हूँ, पर उनके जो कंसर्न है बहुत, उनकी जो फिक्र होती है वो बहुत अलग होती है। आपका जो लीडरशिप क्वालिटी ये है कि आप इन दोनों को ब्रिज कैसे करें, अगेन ये जो एम्फोसिस है ऑर्डिनरी लोगों को कैसे आप आगे बढ़ाएं, उनकी जो प्रॉब्लम्स, उनकी जो समस्याएं, उनको आप कैसे टैकल करें, और इससे जो है बाकी लोग भी जो फायदा उठा सकते हैं, ये जो बॉटम अप टू टॉप जा रहा है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप जो कह रहे हो ना कि इतने सारे महिलाएं देखे, और ये ऑर्डिनरी महिलाएं, ये दे आर नॉट फ्रॉम वेरी यू नो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, दीज आर ऑर्डिनरी पीपल हुम वी कैन सी इन द स्ट्रीट्स, right? I mean, they've come up from humble backgrounds but made it to the top because they've got the opportunities. This is what is the achievement of a good society, a equal society.
0: Aditi ji, to mahila netritva ki jo baat Narendra Modi ji kehte hain ki महिलाओं को अब नेतृत्व क्षमता में आगे आना चाहिए, बतौर पत्रकार आप किस तरीके से बदलाव महसूस करती हैं?
2: देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो बदलाव का एक मैसेजिंग है वो यही है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है किसी भी क्लास और ऑफ सिटीजन्स के लिए, चाहे वो पुरुष हो या कोई भी हो। तो अब ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से 33% आरक्षण की बात हो रही है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में, ये एक मीनिंगफुल स्टेप फॉरवर्ड है महिलाओं को लीडरशिप रोल में एक इम्पॉर्टेंट स्थान देने के लिए। कहने में आसान लगता है लेकिन डिसीजन मेकिंग में जब एक्चुअल रोल देने की बात आती है वो बहुत अलग और एक बहुत डिफरेंट डिबेट हो जाती है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर ये कहता है कि हम इक्वल पार्टिसिपेशन महिलाओं को देना चाहते हैं, जैसे कि आपको याद होगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जब पहली बार आरक्षण आया था तो ऐसे ही शुरू हुआ था, और आज की डेट में आप देखिए कितनी सारी महिला नेतृत्व नेत्रियां हमारी लोकल बॉडीज़ में हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ में हैं, पंचायत्स में हैं। तो लीडरशिप डेवलप होने में भी वक्त लगता है। आप आज लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देंगे तो कल वो उभर के आएंगी, ये लॉजिक देना कि महिलाएं कहाँ से मिलेंगी, उनको चुनाव लड़ने के लिए पार्टीज कहाँ से ढूंढेंगी, ये बहुत लेम लॉजिक है। और ये हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिलेंगी जब ये लॉ पास होगा, पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड है। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखना अपने आप में महिलाओं की सशक्तिकरण का एक सिग्नल था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महिलाओं के पतियों को वहाँ मारा गया था पहलगाम में। दूसरी बात, बहुत देर तक सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को देश के बिहाफ पे ऑपरेशन सिंदूर की अपडेट्स देने के लिए जो बुलाया गया, जो स्टेज दिया गया, वो महिलाओं के प्रति एक विश्वास का सिग्नल था, एक बहुत ही सेल्फ एश्योर्ड गवर्नमेंट का सिग्नल था कि हम तैयार हैं महिलाओं की नेतृत्व को एक्सेप्ट और स्वीकार करने के लिए।
0: जी हाँ, पिछले 25 वर्षों में अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ बदला, लेकिन महिलाओं के संदर्भ में अगर कहें तो महिलाओं को जो उन्होंने एक बदलाव दिया,

0: वो था उनके अंदर का आत्मविश्वास कि आप जो करना चाहती हैं आप कर सकती हैं और देश में उसके लिए माहौल है। अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, अगर आप खेल के मैदान में भारत का तिरंगा लहराना चाहती हैं, आप फाइटर जेट उड़ाना चाहती हैं या फिर आप कुछ और भी करना चाहती हैं, तो आपके लिए आपकी जो सीमा है वो आकाश ही है। और इन 25 वर्षों में हमने बहुत सारे बदलाव देखे और वो बदलाव भारत को एक नया भारत और विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे लेकर जा रहा है। प्रोफेसर सुशीला जी और अदिति जी दोनों कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे दर्शकों और श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 10वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा नारी से नारायणी तक। इसमें भाग ले रही थी शिक्षाविद प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों से ही आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में SIR दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 30 अक्टूबर तक बढ़ाई। सेवा

0: जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। छाया तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी। पकड़ो भाई सब।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरलम में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
2: इसी SIR को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों ने जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
3: NCCF द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण

0: प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
1: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृहमंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
0: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
2: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
3: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
4: पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहां से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
2: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
6: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल

0: जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
1: चाइल्ड प्रोटेक्शन कंसर्न।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
3: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक, 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
4: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
5: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्क्वाश में जोशना चिनप्पा और वेलावन संथिल कुमार की मिक्स डबल जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4

0: स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता, भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 2026 आईजी नगोया। कुछ मुकाबले सिर्फ स्कोर बोर्ड पर दर्ज होते हैं और कुछ मुकाबले किसी खेल की पहचान बन जाते हैं। आईजी नगोया के एशियन गेम्स में आज भारत के लिए ऐसा ही एक दिन रहा। कहीं मैट पर दांव पेस थे, कहीं शूटिंग रेंज पर सांसों को थाम देने वाला सन्नाटा, कहीं दौड़ती हुई सड़क पर एक एथलीट 42 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर रहा था, तो कहीं स्क्वॉश कोर्ट पर हर प्वाइंट इतिहास के और करीब ले जा रहा था। और इन तमाम तस्वीरों के बीच भारत ने आज सिर्फ पदक नहीं जीते बल्कि अपनी खेल विरासत की कई कहानियों को एक साथ आगे बढ़ाया। तो आईजी नगोया में आज भारत ने कितने मौके बनाए, कितने मकाम हासिल किए, किसने तिरंगा पोडियम तक पहुंचाया और किन मुकाबलों ने बढ़ाई कल की उम्मीद, इन सब की पूरी तस्वीर अब आपके सामने है। एशियन गेम्स 2026 में आज क्या कुछ हुआ, पूरे रोमांच को समेटे डेली हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आनंद श्रीवास्तव। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन की हेडलाइंस पर। कबड्डी में भारत का स्वर्णिम डबल धमाका, महिला टीम के बाद पुरुष टीम ने भी ईरान को हराकर जीता गोल्ड मेडल। 42 किलोमीटर की दूरी, 44 साल का इंतजार खत्म। सावन बरवाल ने मैराथन में सिल्वर मेडल जीतकर बनाया नया नेशनल रिकॉर्ड। शूटिंग में आया एक और पदक, आशीष चौकसी, तिलोत्तमा सेन और विदर्शा विनोद ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में जीता सिल्वर मेडल। स्क्वॉश कोर्ट पर कामयाबी भरा दिन, ज्योश्ना चिनप्पा और विलावन सेंथिल कुमार ने जीता ब्रॉन्ज, जबकि अनाहत और अभय सिंह ने सिंगल्स फाइनल में जगह बनाकर दो और पदक किए पक्के। शुरुआत करते हैं कबड्डी से। आज मैच पर हर रेड में रोमांच था, हर टैकल में ताकत और अंत में तिरंगा रहा सबसे ऊपर। कबड्डी के डबल गोल्ड की पूरी कहानी बता रही हैं मेघा अपनी रिपोर्ट में।
1: इंडिया कंप्लीटेड अ गोल्डन डबल इन कबड्डी विद बोथ द मेंस एंड वुमेन्स टीम्स ओवरकमिंग ईरान इन देयर रिस्पेक्टिव फाइनल्स। द वुमेन वर फर्स्ट टू स्ट्राइक इन अ टेंस गोल्ड मेडल कॉन्टेस्ट। इंडिया हेल्ड देयर नर्व टू डिफीट ईरान 37-34 एंड सक्सेसफुली डिफेंड द टाइटल दे वन एट हांगझो। इट इज इंडियाज फोर्थ Women's Kabaddi Gold since the event entered the Asian Games program in 2010. A few hours later, the men made it 2 out of 2. India defeated Iran 40-34 to retain their crown and underline their extraordinary dominance of the sport at the Asian Games. Men's Kabaddi has featured at the Asian Games since 1990 and India have now won 9 gold medals in 10 editions.
0: निशाने लगाने के लिए आंखों से ज्यादा जरूरी होता है उस एक पल में खुद को बिल्कुल स्थिर रखना। शूटिंग रेंज में आज भारत ने कैसे साधा पोडियम का सफर, बता रहे हैं दर्पण टिकिया।
2: शनिवार को एक बार फिर शूटिंग रेंज में भारत की चांदी हुई। महिलाओं की 50 मीटर थ्री पोजिशन राइफल टीम स्पर्धा में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशीष चौकसी की तिगड़ी ने रजत पदक हासिल किया। तीनों ने कुल मिलाकर 1763 पॉइंट हासिल किए और दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही 20वें एशियन गेम्स में भारत शूटिंग के खेल से 11 पदक हासिल कर चुका है। 2023 में बनाए अपने खुद के एशियन गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए चाइनीज तिगड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। इन परिणामों के आधार पर विदर्शा और तिलोत्तमा को इंडिविजुअल प्रतियोगिता के फाइनल में भी जगह मिली। हालांकि स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ खराब शॉट्स के बाद पिछली बार इसी प्रतिस्पर्धा में एशियन गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल लेने वाली आशीष चौकसी क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर हो गई। फाइनल में जहां चीन की जियाउ हान ने एक नया एशियन रिकॉर्ड स्थापित किया, तो भारत की तिलोत्तमा चौथे और विदर्शा विनोद पांचवें स्थान पर रही और दोनों ही एकल वर्ग में पदक से चूक गयी।

0: ट्रैक पर रफ्तार, फील्ड में फासले और भारतीय खिलाड़ियों के नाम होते गए पदक। एथलेटिक्स में भारत के शानदार दिन का पूरा हाल बता रही हैं मेघा।
1: इट वॉज अ 3-medal day फॉर इंडिया इन एथलेटिक्स विद 2 silvers एंड अ ब्रॉन्ज एंड लीडिंग द चार्ज वॉज सावन बरवाल हु प्रोड्यूस्ड अ सुपर्ब रन इन द मेंस मैराथन क्लॉकिंग 2 hours 11 minutes and 37 seconds। बरवाल वन सिल्वर एंड बेटर्ड हिज ओन नेशनल रिकॉर्ड बाई 21 seconds। Later in the day, Tejinder Pal Singh Tur added another Asian Games medal to his collection. The two-time defending champion registered a best throw of 20.64 meters to take silver in the men's shot put. There was a bronze on the track as well. Prachi Chaudhary finished third in the women's 400 meters, clocking 53.21 seconds, while Kiran Pehel missed out on the podium. National record holder Vishal TK finished fifth in the men's 400 meters final. Vishal had impressed in qualification, clocking 45.27 seconds to win his heat, the fastest time across all 3 heats. In the men's triple jump, Karthik Unnikrishnan finished 6th, while Praveen Chitravel's challenge ended early after he suffered an injury on his opening.

0: In the women's 1500 meters, Paril Chaudhary came agonizingly close to a medal, finishing fourth in a personal best 4 minutes 9.46 seconds. Pooja finished sixth. India also set up several possibilities for the days ahead. Animesh Kajur qualified for the men's 200 meters final after finishing second in a semi-final in 20.81 seconds, while Harita Bhadra and Unnati Ayappa progressed to the women's 200 meters final. And in the decathlon, Tejaswin Shankar ended day one on the top of the standings with 4,338 points after five events, keeping himself firmly in contention as the remaining five disciplines take place on Sunday.
1: बॉक्सिंग रिंग में हर राउंड के साथ रणनीति बदलती रहती है, लेकिन लक्ष्य वही रहता है, यानी अगले दौर में जगह। भारतीय मुक्केबाजों के लिए कैसा रहा आज का दिन, सुनते हैं शाहिद आजमी की ये रिपोर्ट।
2: एशियन गेम्स में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए दोहरी खुशी की खबर है। प्रिया घंघास और कपिल पोखरिया ने शानदार जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया घंघास का सामना दक्षिण कोरिया की ओह योन जी से हुआ था। प्रिया ने यह मुकाबला 5-0 से जीतकर अंतिम 8 में जगह पक्की कर ली है। वहीं पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। राउंड ऑफ 16 में कपिल के सामने ईरान के सैम एस्टाकी थे। कपिल ने पूरे मुकाबले में बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और जजों ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से उन्हें विजेता घोषित किया। इस जीत के साथ कपिल ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि 55 किलोग्राम वर्ग में जादू मनीष सिंह को निराशा हाथ लगी। राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला फिलीपींस के कार्लो पालम से हुआ। कड़े मुकाबले में जादू मनी को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा और उनका एशियन गेम्स में अभियान समाप्त हो गया।
1: पुरुष हॉकी में भारत ने जापान को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत की ओर से अभिषेक ने 15वें मिनट में फील्ड गोल किया, जबकि कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 40वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया। ये पूल ए में भारत की लगातार चौथी जीत थी और टीम ने 12 अंक के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एक तीर, एक निशाना और पदक की ओर बढ़ता भारत। दर्पण टिकिया की रिपोर्ट में जानते हैं कि आर्चरी रेंज में आज कैसा रहा भारतीय तीरंदाजों का दिन।
3: शनिवार को एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी का भी आगाज हुआ। पुरुषों की रिकर्व प्रतिस्पर्धा के क्वालिफाइंग राउंड में ही उन्होंने कुल संभव 720 में से 698 अंक हासिल करते हुए एक नया गेम्स रिकॉर्ड सेट किया। रैंकिंग राउंड में धीरज पहले पायदान तो उनके साथ ही नीरज चौहान 20वें और यश भोगे 25वें पायदान पर रहे। बतौर टीम भारत दूसरे स्थान पर रहा। महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में भारत की टीम रैंकिंग छठी रही, तो वहीं बतौर इंडिविजुअल्स कुमकुम मोहद को 10वां, कीर्ति को 20वां तो अंकिता भकट को 26वां स्थान प्राप्त हुआ। महिलाओं की टीम प्रतिस्पर्धा में पहले स्थान के लिए भारत और चीन में टाई रहा, हालांकि टाई ब्रेकर में चीन ने बाजी मारी। इंडिविजुअल स्टैंडिंग्स में चिकिता तानीपारथी पहले, पिछली बार की स्वर्ण पदक विजेता ज्योति वेनम 13वें और प्रतिका प्रदीप 20वें स्थान पर रहीं। तो वहीं मेंस टीम तीसरे और इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में साहिल जाधव 5वें, मणिरत्नम गणेश 14वें और कुशाल दलाल 16वें स्थान पर रहे। आपको याद दिला दें कि क्वालिफिकेशन या रैंकिंग राउंड से केवल ड्रॉ का फैसला होता है और असली प्रतियोगिता का अभी शुरू होना बाकी है। इसके साथ ही रिकर्व मिक्स टीम प्रतियोगिता में धीरज और कुमकुम, तो वहीं कंपाउंड मिक्स टीम प्रतिस्पर्धा में साहिल और चिकिता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
1: एशियन गेम्स में भारतीय घुड़सवारों की आज की चुनौती पर शाहिद आजमी की रिपोर्ट।
2: घुड़सवारी से भारत के लिए अच्छी खबर है। एशियन गेम्स के पदक विजेता हृदय छेदा और जय सूद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत रेसेस के फाइनल में जगह बना ली है। दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने दो क्वालिफाइंग राउंड के बाद टॉप 15 में स्थान हासिल कर लिया है। हृदय छेदा 135.059 अंकों के साथ 11वें स्थान पर है, जबकि जय सूद ने 133.559 अंक हासिल कर 13वां स्थान हासिल किया। वहीं श्रुति बोरा 129.941 अंकों के साथ 24वें स्थान पर रही। व्यक्तिगत रेसेस का फाइनल कल खेला जाएगा, जहां हृदय और जय की नजर पदक पर होगी।
1: रुख करते हैं अब बैडमिंटन कोर्ट का। आज बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों के लिए मिला जुला दिन रहा। मेघा बता रही हैं अपनी रिपोर्ट में कि कौन बढ़ा आगे और किसका सफर हुआ समाप्त।
0: A day of contrasting fortunes for India in the individual badminton competition at the Asian Games. Lakshya Sen's singles campaign came to an early end against former world champion Lokheen Yu. The Indian fought back after losing the opening game, but the Singaporean prevailed 21-12, 15-21, 21-14 in a contest that lasted over an hour. It meant an individual Asian Games medal continues to elude Lakshya, although he has already won a bronze.

0: from the men's team event at these games. Ayush Shetty began with a commanding 21-7 victory over Kazakhstan Maqsood before being stretched by the experienced Chao Tin Chen. Ayush pushed the third seed to three games but went down 16-21, 21-19, 17-21 in the pre-quarterfinals. The standout performance though came from 19-year-old Unnati Huda. After surviving a three-game battle against Malaysia's Wong Ling Ching, Unnati stunned world number 6 Putri Kusuma Vardhani 21-19, 21-13 to book her place in the quarterfinals, where she faces Japan's Akane Yamaguchi. PV Sindhu also began her individual campaign with a straight games win over Chinese Taipei's Chiu Pin Qian before overcoming Japan's Tomoka Miyazaki 21-9, 21-13 in the round of 16 to book her place in the women's singles quarterfinals.
1: कैनो में भारत की चुनौती का क्या रहा नतीजा, दर्पण टिकिया की ये रिपोर्ट।
2: शनिवार को भारत के लिए कनू स्प्रिंट की अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में हर्षवर्धन सिंह शेखावत, पार्वती गीता और प्रसन्ना कुमार सत्यप्रकाश की जोड़ी, तो वहीं राजू रावत और नेहा देवी लचुनबाम की जोड़ी शिरकत कर रही थी। इनमें से कोई भी भारत के लिए पदक नहीं दिला सका।
1: स्क्वॉश में आज भारत के लिए कहानी सिर्फ एक पदक की नहीं रही। एक तरफ अनुभव ने पोडियम छुआ तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी ने फाइनल में जगह बनाकर इतिहास के दरवाजे पर दस्तक दी। स्क्वॉश कोर्ट का पूरा रोमांच मेघा के साथ।
0: इंडियन स्क्वॉश एंजॉयड वन ऑफ इट्स बिगेस्ट डेज एट दीज एशियन गेम्स विद टू सिंगल्स फाइनलिस्ट एंड अ मिक्स्ड डबल्स ब्रॉन्ज। द परफॉर्मेंस ऑफ द डे केम फ्रॉम 18-year-old अनाहत सिंह अप अगेंस्ट होम फेवरेट एंड वर्ल्ड नंबर 6 सतोमी वतानबे। अनाहत फाउंड हरसेल्फ टू गेम्स डाउन एंड देन टू मैच points down in the third, but the Indian produced a remarkable turnaround, saving both match points and winning four consecutive points to take the third game. From there, the momentum completely shifted. Anahat registered a stunning comeback, winning 9-11, 11-13, 12-10, 11-6, 11-3 to reach the women's singles final. It was also the biggest win of a young career by ranking. Abhay Singh then ensured India would have representation in both singles finals. He beat Pakistan's Mohammad Irfan in straight games 11-3, 12-10, 11-6 to move within one victory of gold. Earlier, Joshna Chinnappa and B. Senthil Kumar had claimed bronze in the mixed doubles after an agonizing semi-final defeat to Hong Kong. The Indians had match points in the deciding game but eventually went down 10-11, 11-2, 10-11. For the veteran Joshna, it is a sixth Asian Games medal. And there is history on offer on Sunday. India has never won an Asian Games singles gold in squash. Both Anahat and Abhay now have the opportunity to change that with Olympic qualification also at stake.
1: टेबल टेनिस में आज भारतीय खिलाड़ियों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पॉइंट दर पॉइंट चली इस जंग में भारत का सफर कहां तक पहुंचा, बता रहे हैं शाहिद आजमी।
3: एशियन गेम्स में आज खेले गए महिला और पुरुष एकल मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा। महिला एकल के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में भारत की यशस्विनी घोरपड़े का सामना जापान की मीवा हरिमोटो से हुआ। यशस्विनी ने मुकाबले में अच्छा संघर्ष किया लेकिन जापानी खिलाड़ी ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय खिलाड़ी को 4-1 से शिकस्त दे दी। इस हार के साथ यशस्विनी घोरपड़े का महिला एकल में अभियान समाप्त हो गया है। मीवा हरिमोटो ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष एकल के राउंड ऑफ 32 में भारत के शाह के सामने चीन के लिन शिनडोंग की चुनौती थी। लिन शिनडोंग ने शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी और मानुष शाह को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। इस हार के साथ मानुष शाह भी पुरुष एकल स्पर्धा से बाहर हो गए। इस तरह आज खेले गए टेबल टेनिस के दोनों मुकाबलों में भारत को निराशा हाथ लगी। हालांकि टेबल टेनिस में भारत के लिए इस एशियन गेम्स में पदक का खाता खुल चुका है। कल मिश्रित युगल में दिया चितले और मानुष शाह की भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीतकर भारत को टेबल टेनिस में इस बार का पहला और एकमात्र पदक दिलाया था।
1: फेंसिंग में मुकाबले पलक झपकते बदलते हैं, एक टच जीत और हार का फैसला कर सकता है। भारतीय फेंसर्स ने आज किस तरह पेश की अपनी चुनौती, मेघा बता रही है एरिना का हाल।
0: India's campaign in the team fencing events came to an end at the quarterfinal stage. The men's saber team of Karan Singh, Gisho Nidhi, Lakshya Batser and Vishal Thapar began strongly, beating Philippines 45-27 in the round of 16. That set up a much tougher quarterfinal against Asian powerhouse South Korea. India could not repeat their opening round performance and went down 25-45, ending their medal challenge. There was a similar story in the women's foil. Joyce Ashishta, Stalin Raj, Sonia Devi Vaikom, Kanu Priya Chawla and Meena Devi Narim registered a convincing 45-24 victory over Indonesia to reach the last eight, but host Japan proved too strong in the quarterfinal.

0: bringing India's campaign to an end.
1: एशियन गेम्स के सातवें दिन यानी आज 22 गोल्ड मेडल दांव पर थे। आइए मेघा से जानते हैं मेडल टैली का लेटेस्ट अपडेट।
0: With 2 gold medals in Kabaddi, India have moved up to the 10th in the medals tally, ending the day with 30 medals, 4 gold, 12 silver and 14 bronze. China continue to lead the standings, followed by host Japan in 2nd and South Korea in 3rd.
1: कल का दिन आईची नागोया में भारत के लिए सिर्फ एक और दिन नहीं होगा, क्योंकि सुबह की पहली लहर से लेकर शाम के आखिरी ट्रैक तक भारत की उम्मीदें एक के बाद एक कई मैदानों पर उतरेंगी। सुबह करीब 4 बजे समंदर की लहरों के बीच कमाली मूर्ति और उसके कुछ देर बाद शुगर शांति बनार से सर्फिंग के विमेन्स शॉर्टबोर्ड में अपनी चुनौती पेश करेंगी। यानी भारत का दिन मैदान से नहीं लहरों से शुरू होगा। इसके साथ ही एथलेटिक्स में प्रियंका गोस्वामी और मंजू रानी महिला मैराथन रेस वॉक के फाइनल में उतरेंगी। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और तनी पर्थी चिकिता की कंपाउंड टीम मंगोलिया के खिलाफ उतरेगी, जबकि पुरुष टीम का सामना यूएई से होगा। और अगर ये टीमें आगे बढ़ती हैं तो कुछ ही देर के बाद क्वार्टर फाइनल का रास्ता भी खुल सकता है। बैडमिंटन कोर्ट पर त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी का, जबकि मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा कास्त्रो की जोड़ी चीन की चुनौती का सामना करेगी। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में उन्नति हुडा के सामने जापान की यामागुची होंगी। शूटिंग रेंज में मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पदक पर निशाना साधने उतरेंगी। वहीं ट्रैप में कायनन चनाई, अहवर रिजवी और शपथ भारद्वाज पुरुष वर्ग में, जबकि नीरू, मनीषा कीर और आशिमा अहलावत महिला वर्ग में निशाना लगाएंगी। दोपहर तक एथलेटिक्स ट्रैक भी पूरी तरह भारतीय रंग में नजर आएगा। डिकैथलन में तेजस्विन शंकर और तौफीक नौशाद एक्शन में होंगे। 400 मीटर हर्डल्स में संतोष कुमार तमिला रासन, यहास पलाक्ष, विद्या रामराज और अनु राघवन चुनौती पेश करेंगे। लॉन्ग जंप में नजरे रहेंगे मुरली श्रीशंकर और डेविड सोलोमोन पट्टूराज पर। और फिर आएगा दिन का एक बड़ा पदक सत्र। वेटलिफ्टिंग में हरजिंदर कौर महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उतरेंगी। कुराश में संगीता, भारती, यश कुमार चौहान और विशाल पदक की दौड़ में होंगे। दोपहर बाद स्क्वाश कोर्ट पर निगाहें टिकेंगी। महिला सिंगल्स में अनाहत सिंह और पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अभय सिंह शानदार प्रदर्शन कर इतिहास बनाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। बॉक्सिंग रिंग में भी एक्शन होने वाला है। अंकुश 80 किलोग्राम, परवीन 65 किलोग्राम, सचिन 60 किलोग्राम और नरेंद्र 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में विनिंग पंच जड़ने की कोशिश करेंगे। और फिर शाम ढलते ढलते नागोया का एथलेटिक्स स्टेडियम एक बार फिर भारतीय उम्मीदों का केंद्र होगा। एनसी सोजन और शैली सिंह लॉन्ग जंप के फाइनल में उतरेंगी। सर्वेश कुशारे और आदर्श राम हाई जंप के फाइनल में होंगे। नंदनी कोंगान 100 मीटर हर्डल्स के फाइनल में होंगी। अनिमेश कुजूर 200 मीटर में पदक जीतने का जोर लगाएंगे और 3000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी और अंकिता पदक के लिए दौड़ेंगी। और इसी बीच हॉकी के मैदान पर भारतीय महिला टीम के सामने होगी सिंगापुर की चुनौती। वॉलीबॉल में पुरुष टीम वियतनाम से भिड़ेगी। फेंसिंग में भवानी देवी और भारतीय महिला सेबर टीम की चुनौती जारी रहेगी। और दिन का अंत होगा एथलेटिक्स में महिला 4x100 मीटर रिले के साथ। एक दिन, इतने सारे मैदान और ढेर सारी उम्मीदें। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम के एडिटर थे विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शाहनवाज खान। आईची नागोया से भारत की उम्मीदों और उपलब्धियों का ये सफर यहीं जारी रहेगा। कल फिर मिलेंगे खेल के नए रोमांच और तिरंगे की नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। एशियन गेम्स 2026